ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 9 जून सन 2026। सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और DMK पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री HD कुमारस्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटनास्थल का दौरा किया। श्री कुमारस्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ

0: को तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

श्री रामचरित रूपी पवित्र मानस सरोवर के जल में अपने मन को स्नान करा और भवानी तथा शंकर का स्मरण करके गोस्वामी तुलसीदास ने रामकथा का प्रारंभ किया है। सर्वप्रथम पुण्यभूमि प्रयाग में दो श्रेष्ठ मुनियों भरद्वाज तथा परम ज्ञानी याज्ञवल्क का मिलन और संवाद वर्णित है। भरद्वाज मुनि प्रयागवासी हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब सब लोग श्रद्धा तथा आदरपूर्वक तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए आते हैं। एक बार जब पूरे मकर भर स्नान करके ऋषि मुनि अपने अपने आश्रम लौट गए तो भरद्वाज मुनि ने महर्षि याज्ञवल्क के चरण पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में रोक लिया। परम ज्ञानी याज्ञवल्क से उन्होंने अपने अज्ञान प्रकट करते हुए अपनी शंका उनके सम्मुख रखी। हे मुनिवर, भगवान शिव समेत सभी देव मुनि जिन राम की उपासना करते हैं वो राम कौन हैं?

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, स्वर थे महेंद्र कपूर और साथियों के, संगीत संयोजन था सतीश भाटिया का। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। सुविचार। जिंदगी की किताब में हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कोशिश कीजिए कि उस पर शिकायत नहीं मुस्कान लिखी जाए। इस सुविचार के पश्चात आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म हीरो से सुनिए गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए फिल्म आराधना से, आनंद बख्शी के बोल, एस डी बर्मन का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 5

हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका बुराना आपके साथ। अगले 1 घंटे तक हम साथ मिलकर तय करेंगे एक ऐसा सफर जहाँ शब्दों की गर्माहट होगी, विचारों में मिठास होगी और होगा गीतों का खूबसूरत साथ। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस म्यूजिकल ट्रैक के साथ।

कभी आपने गौर किया है कि ज़िंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जो बिना किसी बड़ी वजह के भी अच्छे लगते हैं। कोई ख़ास खबर नहीं होती, कोई बड़ी उपलब्धि भी नहीं होती, लेकिन फिर भी मन हल्का हल्का सा मुस्कुराता रहता है। शायद खुशी हमेशा किसी मंजिल का नाम नहीं होती, कभी कभी वो रास्ते में खिलते छोटे छोटे फूलों का एहसास भी होती है। जीवन के कुछ छोटे छोटे पल जिनसे आपको खुशी मिले, वही आपके जीवन को खूबसूरत बनाते हैं।

दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में कुछ बड़ा हो जाए तब खुश हो जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि जीवन का ज़्यादा हिस्सा उन्हीं आम दिनों से मिलकर बना है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम हर दिन को उसी एक्साइटमेंट की तरह जीना सीख लें तो शायद हमें खुशियों की तलाश में बहुत दूर तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेड़ कभी अपने फलों का शोर नहीं मचाते, नदियाँ अपनी गहराई का कभी परिचय नहीं देती, और सूरज रोज उगकर भी अपने काम का बखान नहीं करता। प्रकृति ने हमें चुपचाप एक बात सिखाई है, जिनमें सचमुच ताकत होती है उसे खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं होती।

कभी कभी जीवन में सबसे बड़ी थकान काम की नहीं होती, बल्कि उन बातों की होती है जिन्हें हम दिल में उठाए घूमते रहते हैं। पुरानी नाराजगियां, अधूरी उम्मीदें, कुछ अनकहे सवाल, ये सब हमारे मन की अलमारी में जमा होते हैं। आज की सुबह शायद उन चीज़ों को थोड़ा हल्का करने का दिन हो सकती है। हर जवाब मिल जाएगा ये ज़रूरी नहीं, लेकिन हर सवाल के साथ जीना सीख लेना भी एक कला है। और यकीन मानिए, जो लोग अपने मन को हल्का रखना सीख लेते हैं, वे मुश्किल रास्तों पर भी मुस्कुराते हुए चल लेते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

एक बार फिर स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका आपके साथ। दोस्तों, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ों में से एक है किसी का भरोसा जीतना। यह ना तो खरीदा जा सकता है ना ही मांगा जा सकता है, ये धीरे धीरे कमाया जाता है। और जब कोई व्यक्ति बिना किसी शर्त के आप पर भरोसा करता है, तो वो आपको एक ऐसी जिम्मेदारी देता है जिसकी कीमत किसी धन दौलत से नहीं लगाई जा सकती। रिश्ते हमेशा बड़े बड़े वादों से मजबूत नहीं होते। कई बार एक छोटी सी बात, समय पर किया गया एक फोन या किसी की बात ध्यान से सुन लेना भी रिश्तों को उम्र भर के लिए खूबसूरत बना देता है।

हो रहा है। कई बार जिंदगी हमारे लिए वो रास्ता चुनती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होता। बाद में मुड़कर देखने पर समझ आता है कि जो देरी हमें परेशान कर रही थी वही हमारी तैयारी का समय था। इसलिए आज खुद पर थोड़ा भरोसा रखिए, हर कहानी का अपना समय होता है। कुछ फूल बसंत में खिलते हैं तो कुछ बारिश का इंतज़ार करते हैं।

तो दोस्तों, आज की एक खूबसूरत सुबह में बस इतना ही। याद रखिए कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमेशा बड़ी वजहों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक पॉजिटिव थॉट, एक सच्ची मुस्कान या अपने लोगों के लिए निकाला गया थोड़ा सा वक्त ही पूरे दिन को सुंदर बना देता है। इसी उम्मीद के साथ कि आपका दिन खुशियों, सुकून और नई ऊर्जा से भरा है रहे, मैं आपकी रेडियो दोस्त लेती हूँ आपसे विदा। फिर मुलाकात होगी।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़, जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी

0: हमारी वेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों की सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लियरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवम मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
1: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 crore रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत

0: वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
1: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का, इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
0: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
2: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रहता हूँ।
0: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
4: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जांच के लिए एक विशेष समिति गठित की है। समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
3: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमरीका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला

0: मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, टीएमसी में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट एनडीए के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक जीपीएस से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मर्वेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। अमेरिका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज दाम्बुला में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। Union Home Minister Amit Shah to launch Land Port Management System in New Delhi today. 5-day BRICS Agriculture Ministers meeting to begin today in Indore, Madhya Pradesh. Indian Embassy in Muscat confirms rescue of all 24 Indian seafarers aboard MT Merivex after fire incident south of Strait of Hormuz. Iran and Israel announce halt in attacks against each other but warn of retaliation if ceasefire breached again. U.S. federal court strikes down President Donald Trump's $1,00,000 H-1B visa fee. And in men's cricket, India A to take on Sri Lanka A in opening match of Tri-Nation series at Dambulla this morning.

गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, खम्मा घनी। सूरज की तरह दमकते चमकते रहिए, और जो ये सुबह आपके लिए एक नई सौगात लेकर आई है, नए ख्वाब लेकर आई है, उसके इंतज़ार के साथ ही हमारा ये प्रोग्राम जो है नमस्कार कार्यक्रम, आप सभी का पसंदीदा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है।

जी अशोदाओं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक हमारे व्यवहार में भी दिखे। इसलिए सिर्फ विचारों को सुनना, पढ़ना और छोड़ देना नहीं होना होता है, बल्कि उनके

जी अश्वताओं, विचार चाहे कितने भी उत्तम क्यों न हो, लेकिन वो सार्थक तभी माने जाते हैं जब उनकी झलक हमारे व्यवहार में भी दिखे। इसलिए सिर्फ विचारों को सुनना, पढ़ना और छोड़ देना नहीं होना होता है, बल्कि उनके साथ जीना भी हमें आना चाहिए। और इस बात के साथ आगाज हो चुका है आपकी फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार का।

तो श्रोताओं, ट्रांसमीटर पर हैं नरेंद्र सिंह राठौर, प्रकाश पंवार। और कंट्रोल रूम से नियंत्रण कमान संभाल रहे हैं सुनील जयपाल।

0: और श्रोताओं, टीम परिचय में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि आज अनाउंसर ऑन ड्यूटी हमारे साथ कौन है। जी हाँ, आज हमारे साथ अनाउंसर हैं निशिका बोराना और कविता सांखला। और श्रोताओं, हमारे प्रोग्राम की प्रस्तुति और संयोजन है राजेश लामरोड का। और नमस्कार की टीम में हम आपके साथ हैं दो दोस्त। मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
1: नेहा रांकावत।
0: तो श्रोताओं, हमारी पूरी टीम का नमस्कार।

0: नेहा, एक बात बताओ,
1: पूछो।
0: जो बच्चे होते हैं उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: खिलौने हो गए, झूले हो गए, झूला झूलना उनको बहुत पसंद होता है, और ऐसे ही घूमते रहना पार्क में, वो भी उन्हें बहुत पसंद होता है।
0: पसंद होता है। और घूमते घूमते अगर मेले में चले जाएं तो मेले में उन्हें सबसे अच्छा क्या लगता है?
1: मेले में घुसते ही एंट्रेंस पे ही उन्हें दिख जाते हैं गुब्बारे, तो गुब्बारे तो उन्हें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं।
0: बिल्कुल, हम देखते हैं ना कि मेले की एंट्रेंस पे ही बहुत सारे लोग जो है गुब्बारे फिरकियां लेकर खड़े होते हैं, और जहां पे रंगीन गुब्बारे दिख जाते हैं बच्चों का मन वहीं पे मचल जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो बिल्कुल ऐसी ही एक छोटी सी बात तुमसे शेयर करती हूँ, हमारे श्रोताओं को भी बताते हैं। एक छोटा सा गांव था जहां पर हर घर में रंग बिरंगे फूलों से सजावट होती थी। वहीं पे एक छोटा बच्चा रहता था जिसका नाम था मोहन। बहुत खुश मिजाज था और बहुत हंसमुख बच्चा था। उसे भी जैसे दूसरे बच्चों को पसंद होते हैं, पसंद क्या थे?
1: गुब्बारे।
0: गुब्बारे। तो हर रविवार को मोहन जो था वो अपने पिताजी के साथ गांव के पास एक मेला लगता था, वहां जाता था। तो मेले में गुब्बारों का ढेर लगा रहता था, लाल पीले हर तरह के बहुत खूबसूरत गुब्बारे। उसे आसमान में उड़ते हुए देखना भी बहुत अच्छा लगता था और खरीद कर भी लाता था। और उसके पिताजी को क्योंकि पता था कि उसे गुब्बारे बहुत पसंद हैं, तो वो उसे गुब्बारा खरीदवा कर दे देते थे। तुम्हें पता है क्या होता है कि एक बार ये जो मोहन था है ना, मेले में गया, और जब मेले में गया तो इसने देखा कि एक बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है। जो बूढ़ा व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, वो उस बच्चे वहाँ पे बहुत सारे गुब्बारे लेकर बैठा है, और जो गुब्बारे हैं लेकिन बहुत ही फीके, थोड़े से खराब इस तरह के गुब्बारे थे। तो उसने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से मोहन को देखा और कहा कि बेटा एक गुब्बारा खरीदोगे? तो मोहन ने कहा कि भाई खरीदना तो चाहता हूँ, गुब्बारे तो मेरे फेवरेट हैं, लेकिन आपके गुब्बारे बहुत गंदे हैं, आपके गुब्बारे ना बहुत टूटे फूटे से लग रहे हैं।
1: टूटे फूटे से।
0: हाँ, फटे हुए से लग रहे हैं, है ना? क्योंकि बच्चा था, उसे वो भाषा जिस तरह
1: हाँ।
0: से समझ में आती थी उसने वैसे बोली। तो जो वो व्यक्ति था वो बोला, हाँ बात तो तुम्हारी सही है, गुब्बारे मेरे गंदे भी हैं, फटे हुए भी हैं, लेकिन ये गुब्बारे मेरे बचपन से मैंने सहेज कर रखे हैं,
1: अरे वाह।
0: मैंने इन्हें बहुत सुरक्षित रखा है, क्योंकि मैं गुब्बारों से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि कोई इन गुब्बारों को ले और इनको फिर से सुंदर बना करके हवा में उड़ाए और इनको उड़ान भरने दे। तो मोहन ने जब उस व्यक्ति की तरफ देखा तो उसे कहीं ना कहीं ये लगा कि जो प्यार मेरे मन में गुब्बारों के लिए है वो इस व्यक्ति के अंदर भी था। तो उसने अपनी जेबों में हाथ डाला, और जेबों में क्या होते हैं, सिक्के।
1: सिक्के, खनकते सिक्के।
0: तो उसकी जो बचत थी थोड़ी बहुत है ना,
1: हाँ।
0: उसने वो सिक्के दोनों जेबों में हाथ डालकर सिक्के निकाले और वो जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके सामने रख दिया कि मेरे पास तो ये है। तो बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि जो तुम्हारे पास है दे दो और ये सारे गुब्बारे ले जाओ।

0: बच्चा जो था गुब्बारे लेकर आ गया और वहाँ पे आकर उसने देखा कि यार इनको बहुत सुंदर करा जा सकता है। और उसने अपनी जो टोली थी उस टोली में वो सारे गुब्बारे बांटे, सारे बच्चे गुब्बारे पाकर खुश हो गए और सबको बिठा करके उन गुब्बारों को और सुंदर बनाने की, कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे करके वो गुब्बारे जो थे उनको बहुत खूबसूरत बना दिया। और जैसे ही बच्चे, जिन बच्चों के गुब्बारों पे कलर नहीं हो पाया लेकिन गुब्बारे की खुशी उन बच्चों को मिल गई, तो वो जो खुशी बच्चों के चेहरे पर मोहन ने देखी तो उसे समझ में आ गया कि बाहरी चमक दमक जो होती है ये काम की नहीं होती है, लेकिन जो खूबसूरती अंदर होती है वो सबसे खूबसूरत होती है। तो जो गुब्बारे उड़ाने की खुशी होती है वो तो अंदर से आती है ना,
1: हाँ,
0: तो
1: और मिल
0: बस
1: बांट कर उन्होंने जो काम किया उससे उन्हें सच्ची खुशी मिल गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल तुमने सही कहा कि जो मिल बांट कर उन्होंने गुब्बारे आपस में लिए वो सिर्फ गुब्बारे नहीं होकर खुशियों की, कहते ना, सौगात हो गई उनके लिए। तो बिल्कुल सच्ची खुशी अगर आप भी पाना चाहते हैं तो बाहरी चमक दमक ना देखें बल्कि अंदर की खुशी को देखें।

0: दोस्तों बिल्कुल इसी गाने की मुखड़ा जो है यह हमें बता रहा था कि भाई इस दिल का मैं क्या करूं, और हमें हर पल ये लगता है कि इस दिल का मैं क्या करूंगा, कि ये किस तरह से मुझे हर वक्त कुछ ना कुछ नई नई, ऐसा होता है ना, कोई ख्वाब दे देता है, कभी कुछ आपको धोखा सा दे देता है, कभी कभी कहीं फिसल जाता है, कभी किसी को पकड़े रखता है। तो ये दिल जो है वो इतना
1: मन
0: बेईमान
1: चला
0: सा,
1: सा
0: मनचला
1: है,
0: सा क्यों
1: मन
0: होता
1: चला
0: है?
1: सा, दिल बेईमान है, दिल मन चला है, ऐसे बहुत सारे हम देखते हैं कि कई गीतों में भी नेहा इस तरह की बात आती है। लेकिन कहते हैं ना कि जो रिश्ता है वो अंकुरित तो होता है प्रेम से,
0: दिल
1: जिंदा
0: से।
1: रहता है संवाद से,
0: हाँ,
1: और महसूस होता है संवेदनाओं से।
0: बिल्कुल,
1: और एक खास बात, जिए जाते हैं दिल से।
0: क्या
1: तो
0: बात।
1: गाड़ी शुरू हुई दिल से और दिल तक
0: हाँ
1: पहुंच गई, तो बस बात यही है कि जहां दिल मनचला हो चले तो
0: हाँ
1: उसे थोड़ा सा थाम लो, जहां दिल थोड़ा बेचैन हो जाए वहां उसे रोक लो। और दिल की बात सुननी तो वाजिब होती है, वैसे आप अगर दिल की बात पहली बार में सुन लेते हैं तो कहते हैं वो हमेशा सही
0: सही
1: डिसीजन
0: होती
1: होता
0: है।
1: है। और वो कहते हैं ना, बहुत फिल्मी अंदाज है वैसे तो, लेकिन फिर
0: क्या,
1: भी कहते हैं कि दिल होता लेफ्ट में है लेकिन होता राइट है।
0: अरे वाह,
1: तो बिल्कुल इन्हीं बातों के साथ दिल की बात जरूर सुने, लेकिन हाँ, अगर आपका दिल ज्यादा आपको बेचैनी शो कर रहा है तो फिर थाम ले और अपनी सूझबूझ से आगे का काम
0: आगे
1: ले।
0: का काम करें, बिल्कुल। और आप अभी जो हमारा दिल कर रहा है आपको एक और खूबसूरत सा गीत सुनाने का, तो बिल्कुल सुनिए।

0: बिल्कुल श्रोताओं, जो आप चाहेंगे वो आप बन ही जाएंगे, और आप जो चाहेंगे वो आप करके दिखा भी देंगे, क्योंकि जो चाह जहाँ चाह होती है वहीं राह भी हो जाती है, और आप अगर चलते रहेंगे तो फिर कोई भी जो सफ़र है वो आसान बन ही जाएगा। तो कहते हैं ना, थक कर मत बैठ मुसाफिर, अभी सफ़र बाकी। बुझी नहीं उम्मीदों की लौ, उसका असर बाकी है। जो आज कठिन दिखाई दे कल आसान हो जाएगा, और हर रात के बाद सुनहरा एक नया सवेरा आएगा।
1: क्या बात है नेहा, ये जो बात तुमने कही है बिल्कुल सही है, क्योंकि जहाँ चाह है वहाँ राह है। और जीवन में कई बार, जैसा तुमने कहा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमारे सामने बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर देती हैं, और हम कहते हैं ना, डगमगा जाते हैं। कई बार रास्ते कठिन लगते हैं, मंजिल दूर दिखाई देती है, लेकिन अगर मन में दृढ़ इच्छा है, आत्मविश्वास है, खुद पे कॉन्फिडेंस है, और सबसे बड़ी बात है आप में मेहनत करने का कहते ना
0: जुनून।
1: जुनून है, तो फिर हर मुश्किल आसान हो जाती है, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन जो है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। इसलिए सारी बातें जो कहती हैं वो ये कहती है ना कि जहाँ चाह वहाँ राह। तो ये जो चाहत है दिल में आप ले आइए, और फिर
0: और
1: देखिए
0: राहत
1: कि
0: पाइए।
1: राहत पाइए, मुसीबत छूमंतर हो जाएगी।

0: श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं और यहाँ हम रुकेंगे न्यूज ब्रेक के लिए। आपसे फिर मिलेंगे नमस्कार प्रोग्राम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में, 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू होगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा, श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है।

0: ये बैठक 13 जून तक चलेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस वर्ष ब्रिक्स संगठन की भारत की अध्यक्षता में हो रही इस बैठक में किसानों की आमदनी, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इससे पहले कल श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए हर साल प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। उन्होंने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है।
2: 2015 में भारत वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का चेयरपर्सनशिप भारत को मिली थी। 2017 में इस पर कार्य शुरू किया और 9 महीने के अंदर 2018 में हम जब रांची में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया आयुष्मान भारत, और यह विश्व का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम बना। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, वर्ल्ड शुड नो हाउ इंडिया हैज डन दिस आयुष्मान भारत।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किया। इनमें 12 जिले के कुंजेड़ निवासी भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन अनिमेश पाटनी भी शामिल हैं। ग्रुप कैप्टन अनिमेश को असाधारण वीरता, नेतृत्व और रणनीतिक कौशल के लिए वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया था। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। प्रदेश को नशामुक्त बनाने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट लक्ष्मण रेखा के तीसरे चरण में 5,410 लोगों ने नशामुक्त राजस्थान का संकल्प लिया है। राजस्थान पुलिस के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की ओर से ये प्रोजेक्ट चलाया गया। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जनभागीदारी भी जरूरी है। अभियान के दौरान स्कूल कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, साथ ही शैक्षणिक संस्थानों के आसपास 500 मीटर के दायरे को सख्ती से नशा मुक्त क्षेत्र बनाया गया। इसके अलावा नशीली गतिविधियों की गुप्त सूचना देने के लिए शिकायत पेटियां भी लगाई गई हैं। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, YouTube चैनल राजस्थान AIR न्यूज और Facebook AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी और अधिक कार्यकुशल बनाने के लिए जल्दी ही एकीकृत ईआरपी यानी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग प्रणाली लागू की जाएगी। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कल जयपुर में आयोजित बैठक में इसके लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस नई व्यवस्था से निगमों में निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज होगी और कामकाज में कम खर्चा आएगा। साथ ही मानव संसाधन, वित्त, लेखा और परिसंपत्तियों के प्रबंधन जैसे काम एक ही प्लेटफॉर्म पर हो सकेंगे। इससे उपभोक्ताओं की बिलिंग और शिकायतों का निवारण भी आसान हो जाएगा। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में करीब 1,95,00,000 से अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवा

0: सेवाओं का लाभ मिल रहा है। बिजली मित्र ऐप के जरिए लोग घर बैठे कनेक्शन और बिल भुगतान जैसी सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। प्रदेश में 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। योग दिवस पर शिक्षण संस्थानों, पुलिस थानों, जेलों, प्रमुख पर्यटन और विश्व विरासत स्थलों पर सुबह 6 बजे से 8 बजे तक विशेष योग सत्र आयोजित किए जाएंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में इन तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सभी संबंधित विभागों और जिला कलेक्टर को योग संगम पोर्टल पर अधिक से अधिक लोगों का पंजीकरण सुनिश्चित करने को कहा। इस वर्ष योग दिवस का विषय स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग रखा गया है। इस बीच प्रदेश भर में योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रमों का सिलसिला जारी है। कल हनुमानगढ़ के नर्सिंग महाविद्यालय में एक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। इसमें आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक ने विद्यार्थियों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के महत्व के बारे में बताया। भरतपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए ऑनलाइन योग सत्र आयोजित किया जाएगा। जिला कलेक्टर कमर चौधरी ने सभी विभागों को इस अभियान से अधिक लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा है कि वित्तीय प्रबंधन में तकनीक का बढ़ता उपयोग जवाबदेही को मजबूत कर रहा है। मुख्य सचिव ने कल जयपुर में वित्त भवन स्थित कोष और लेखा निदेशालय के निरीक्षण के दौरान ये बात कही। उन्होंने साइबर ट्रेजरी और ई ट्रेजरी की कार्यप्रणाली का जायजा लेते हुए वित्तीय प्रशासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने बैठक में केंद्र सरकार की योजनाओं को SNA स्पर्श पोर्टल पर जल्द जोड़ने और जस्ट इन टाइम भुगतान प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू करने को कहा। और अब मौसम। राज्य में एक बार फिर गर्मी का असर बढ़ने लगा है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे तेज गर्मी और उमस महसूस की जा रही है। 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म शहर रहा। इसके अलावा फलोदी, बीकानेर और जैसलमेर में भी पारा 44 डिग्री के ऊपर दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में आगामी 2-3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने और तापमान में 2-3 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कहीं कहीं लू की स्थिति बन सकती है, साथ ही धूल भरी हवाएं चल सकती हैं। दूसरी ओर राज्य के पूर्वी हिस्सों में गरज के साथ हल्की बारिश का दौर कहीं कहीं जारी रहने के आसार हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण ने कल जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। अभियान के दौरान JDA के मास्टर प्लान के तहत प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी सड़क को अतिक्रमण मुक्त किया गया। JDA के इस बड़े अभियान के दौरान सड़क सीमा में आ रहे 125 से अधिक अवैध निर्माणों और 5 धार्मिक ढांचों को हटा दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में। 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज से राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमों की शुरुआत हो रही है। प्रदेश के बिजली निगमों के कामकाज को पारदर्शी बनाने के लिए जल्द ही एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया जाएगा। और राज्य में एक बार फिर गर्मी ने जोर पकड़ा। श्रीगंगानगर में पारा 45 डिग्री के पार पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: श्रोताओं, न्यूज के बाद आपका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में आपके साथ मैं हूं सीमा शर्मा और मेरे साथ
2: नेहा रांकावर।
1: तो बिल्कुल चलते हैं उस ओर जहां पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कर रही है आपका इंतजार।

तो इतिहास के पन्नों की तरफ आपको लेकर चलते हैं और एक घटना बताते हैं। 1815 की आज ही के दिन यूरोप के पुनर्गठन के लिए प्रसिद्ध कांग्रेस ऑफ वियना का अंतिम समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।

0: श्रोताओं, 9 जून 1870 में महान अंग्रेजी उपन्यासकार चार्ल्स डिकेंस का निधन हुआ था, जिनकी रचनाएं आज भी विश्व साहित्य की धरोहर मानी जाती हैं।
1: और आज ही के दिन सन 1934 में प्रसिद्ध डिज्नी पात्र कैरेक्टर डोनाल्ड चक ने पहली बार फिल्म द वाइस लिटिल हेन में डेब्यू किया था।
0: श्रोताओं, क्या आप जानते हैं कि भूमि बोल अदुल्यादेश थाईलैंड के राजा के रूप में अभिषिक्त हुए थे आज ही के दिन यानी कि 9 जून 1946 को।
1: और आज ही के दिन 1967 में सिक्स डे वॉर के दौरान इसराइल ने गोलान हाइट्स पर नियंत्रण प्राप्त किया था।

0: श्रोताओं, 9 जून में और जो शख्सियत हैं जिनके नाम दर्ज हैं, जिन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में किया और जिनके जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, ऐसा ही एक नाम है चौधरी दिगंबर सिंह। जी हाँ, इनका जन्म हुआ 9 जून 1913 को। आप स्वतंत्रता सेनानी थे और 4 बार लोकसभा सांसद रहे। इन्होंने सहकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। श्रोताओं, किसानों की भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन का सबसे पहला प्रयास इनका ही था। किसानों की बात संसद में कहने के लिए दिगंबर सिंह काफी प्रसिद्ध थे। श्रोताओं, लगभग 25 वर्ष ये मथुरा जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे और मथुरा में आकाशवाणी की स्थापना करवाने का श्रेय इन्हें ही जाता है।
1: साथ ही श्रोताओं, आज भारतीय फिल्म संगीत के महान साधक वसंत देसाई की भी जयंती हम मना रहे हैं। उनका जन्म जो है वो हुआ था 9 जून 1912 को महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के सोनवड़े में हुआ था और भारतीय सिनेमा में उन्होंने शास्त्रीय संगीत, लोक धुनों और भावपूर्ण रचनाओं का जो एक सुंदर समन्वय किया, उन संगीतकारों में उनका नाम अत्यंत सम्मान के साथ लिया जाता है। और उन्होंने अपने संगीत जीवन की जो शुरुआत की थी वो भी बताते हैं आपको, एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माण संस्था से की थी। बाद में उन्होंने निर्देशक वी शांताराम की अनेक कालजयी फिल्मों को अपने संगीत से अमर बना दिया था। और उनकी प्रमुख फिल्मों की अगर बात करें, जिसमें है झनक झनक पायल बाजे, दो आंखें 12 हाथ, गूंज उठी शहनाई, संपूर्ण रामायण, आशीर्वाद और गुड्डी शामिल हैं। उनकी रचनाओं में ही भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराई और लोक संगीत की मिठास का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है श्रोताओं। और उनकी उस जो फिल्में थी उनमें उनके जो गाने हैं वह है ए मालिक तेरे बंदे हम, बोले रे पपीहरा जैसे गीत जो है वो आज भी हम सभी संगीत प्रेमियों के हृदय में विशेष स्थान रखते हैं। और उन्होंने साथ ही प्रसिद्ध संस्कृत रचना जो थी एक मैत्री भजत को भी संगीतबद्ध किया था, जिसे MS सुब्बुलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तुत किया था। उन्होंने अपने सुरों से भारतीय सिनेमा को एक ऐसी धरोहर दी जो आज भी पीढ़ियों को मंत्रमुग्ध करती है। शास्त्रीय संगीत की गरिमा और लोक धुनों की सहजता को जन जन तक पहुंचाने वाले इस महान संगीतकार को जयंती पर सादर नमन हम करते हैं कि वो सुरों का वो साधक था जिसने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं बल्कि संस्कृति और संवेदना की अभिव्यक्ति बना दिया था। श्रोताओं,

श्रोताओं, 9 जून में ही दर्ज है एक और शख्सियत जिनका नाम है नंदिनी सतपथी। आप एक भारतीय लेखिका और राजनीतिज्ञ के रूप में जानी जाती हैं। जून 1972 से दिसंबर 1976 तक ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं। सतपथी का जन्म 9 जून 1931 को हुआ था श्रोताओं, और भारत के कटक के पीथापुर में पली बड़ी थी। कालिंदी चरण पाणिग्रही की सबसे बड़ी बेटी। और श्रोताओं, 4 अगस्त 2006 को इन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था।

और श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का। उनका जन्म हुआ था आज ही के दिन सन 1949 को अमृतसर पंजाब में, और उन्होंने वर्ष 1972 में भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में प्रवेश कर इतिहास रचा था और देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी थी। और फिर किरण बेदी ने अपने जो लंबे प्रशासनिक जीवन में दिल्ली, गोवा, मिजोरम और चंडीगढ़ सहित विभिन्न स्थानों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई थी। वे विशेष रूप से दिल्ली के तिहाड़ जेल सुधारों के लिए जानी जाती हैं। जेल प्रशासन में सुधार, शिक्षा, नशा मुक्ति और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए उनके प्रयासों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। और पुलिस सेवा के साथ साथ वे एक उत्कृष्ट टेनिस खिलाड़ी भी रही हैं। श्रोताओं, उन्होंने कई राष्ट्रीय और एशियाई टेनिस प्रतियोगिताओं में भी सफलता प्राप्त की थी। और सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी देखा जाए तो उनके योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1994 में प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। साथ ही सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने शिक्षा, महिला सशक्तिकरण

नशा मुक्ति और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में सक्रिय योगदान दिया था और 2016 से 2021 तक वे पुडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। साहस, अनुशासन और जनसेवा की मिसाल किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं के लिए नए द्वार खोल दिए थे। तिहाड़ जेल सुधारों से लेकर सामाजिक उत्थान तक उनका जीवन समर्पण और नेतृत्व की प्रेरक गाथा है। जन्मदिन पर हम उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं और अभिवादन करते हैं। जो लोग परिवर्तन लाना चाहते हैं दोस्तों, वे परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करते बल्कि स्वयं जो है वो पहल करते हैं।

श्रोताओं, आज हम अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मना रहे हैं 9 जून को। इसकी शुरुआत साल 2007 में हुई थी। मानव सभ्यता के विकास के साथ साथ आम आदमी की जिंदगी में दस्तावेज यानी अभिलेख का महत्व बढ़ता गया था और हमारे आपके सहेजे दस्तावेज और अभिलेख कई बार पूरे समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं श्रोताओं। और इन्हीं अभिलेखों के संरक्षण और प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस मनाया जाता है। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हम लेकर आए हैं एक फोन वार्ता जिसका आप सभी को इंतजार रहे।

0: इनटेक जोधपुर चैप्टर के और अतिरिक्त सह संयोजक हैं भारतीय राष्ट्रीय कला विरासत न्यास इनटेक राजस्थान चैप्टर राजस्थान के। विषय विशेषज्ञ सदस्य हैं भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग जोधपुर के और जिला पर्यटन विकास समिति, धरोहर संरक्षण समिति, ब्लू सिटी समिति, महायोगी गुरु गोरखनंद शोध पीठ, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश, इन सभी के आप सदस्य हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं हमारे प्रोग्राम नमस्कार में। नमस्कार।
1: आपका भी बहुत बहुत आभार और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं का, जिन्हें मैं सादर प्रणाम करता हूं और इस अभिलेख दिवस पर बधाइयां प्रेषित करता हूं।
0: जी सर। सर, जैसे सबसे पहली जो बात दिल में आती है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है, लेकिन एक ऊपरी सतही जो जानकारी है वो ही लोगों को पता होती है। तो हमारे श्रोताओं को सबसे पहले हम यही उनकी तरफ से पूछना चाहेंगे कि अभिलेख होता क्या है।
1: अभिलेख एक प्रकार का डॉक्यूमेंट कह सकते हैं
0: जी।
1: अगर हम भारत के प्राचीन काल से अब तक के गौरवशाली इतिहास को अगर लिपिबद्ध करना हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर स्रोत है तो वो अभिलेख है। अभिलेख पत्थर पे लिखी उत्कीर्ण शिलाखंड भी हो सकता है, जिसे हम लेख कहते हैं। इसी तरह से कॉपर प्लेट्स भी हो सकते हैं। आगे चलकर जब कागज का आविष्कार हुआ तो कागज पे लिपिबद्ध करके लिखी जाने वाली वे सभी पांडुलिपियां भी अभिलेखों की श्रेणी में ही आती है।
0: जी सर।
1: अभिलेख आधिकारिक रूप से राजकीय और शासकीय आज्ञाओं का और देश के और राष्ट्र की मातृभूमि के लिए वीर होने वाले वीरों की स्मृति में जो शिलालेख लगाए जाते हैं, ये सभी अभिलेखों की श्रेणी में आते हैं।
0: जी सर। तो सर, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, हम कैसे पता करें कि भारत में जो है अभिलेखों की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इस बारे में हमारे श्रोताओं को
1: तो
0: बताएं।
1: प्राचीन काल से ही हमारे देश में अभिलेखों के उल्लेख मिलते हैं, लेकिन भारत में सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख हैं वो सम्राट अशोक के हैं।
0: जी सर।
1: सम्राट अशोक ने अपने सभी राज्य की आज्ञाएं और उपदेश और महत्वपूर्ण घटनाओं को बड़े बड़े शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाया और बहुत सारे पिलर्स उन्होंने देश के विभिन्न प्रांतों में स्थापित किए, जो आज भी उस गौरवशाली इतिहास को उस अक्षरों के माध्यम से हमें वो जानकारी प्रदान करते हैं।
0: जी सर। सर, जैसे अभिलेखों की श्रृंखला के बारे में भी हम लोग कुछ सुनते हैं कि अभिलेखों की श्रृंखला होती है, तो किस तरह की होती है, क्या इसमें बातें होती हैं, हमारे श्रोता इस बारे में भी जानने के इच्छुक हैं, आप हमें बताएं कि अभिलेखों की श्रृंखला क्या है।
1: मुख्य रूप से जो जब से भाषा का ज्ञान हुआ है तब से हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को या तत्कालीन समय के लोगों को जानकारी देने हेतु जब हम उन अक्षरों को किसी पर उकेरते हैं
0: जी
1: तो अभिलेख का स्वरूप ले लेते हैं। तो पहला जो हमारा अभिलेख का सबसे बड़ा सोर्स है वो है पत्थर। तो पत्थरों पर उत्कीर्ण जो लेख है वो महत्वपूर्ण जानकारियां हमें उस काल और उस समय की घटनाओं को बताती है। इसलिए जब उन सभी घटनाओं का लेखा जोखा हम अभिलेखों के माध्यम से एकत्रित करते हैं तो श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमें गौरवशाली इतिहास की जानकारी प्राप्त हो जाती है और उस इतिहास को हम अपने दृष्टिकोण से लिख सकते हैं। तो अशोक के समय से लेकर वर्तमान तक हजारों करोड़ों ऐसे अभिलेख हमारे देश में मिले हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने या नेशनल आर्काइव्स और नेशनल म्यूजियम के संस्थानों के द्वारा संरक्षित किया गया। अंग्रेजी शासनकाल के दरमियान में रॉयल एसेटिक सोसाइटी जब बनाई गई थी बंगाल कलकत्ता में तो उनके द्वारा भी बहुत सारे अभिलेखों को संग्रहित किया गया। अभिलेख कई प्रकार के हो सकते हैं। प्रशस्तियां लिखी जाती थी अभिलेखों में, राजकीय आज्ञाएं लिखी जाती थी अभिलेखों में, किसी व्यक्ति की मृत्यु पर या उसके वीर गति को प्राप्त करने पर उसकी स्मृति में जो देवली स्थापित की जाती है उसमें अभिलेख लिखा जाता है। इसी तरह से आगे चलकर पर ग्रंथों की भी रचनाएं हुई। अगर हम राज प्रशस्ति देखते हैं, राजसमंद झील जब बनाई गई थी मेवाड़ के महाराणा राज सिंह जी के द्वारा तो वहां पूरा का पूरा एक पांडुलिपि को जो है वो पत्थरों पर उत्कीर्ण कर दिया गया। तो ये सबसे बड़ी भारत की जो है वो पांडुलिपि कही जा सकती है जो पत्थरों पर उत्कीर्ण है।
0: जी सर।
1: तो जब जैसे जैसे विकास होता गया पत्थरों के बाद, अगर हम दिल्ली के लो स्तंभ को देखते हैं जो आयरन पिलर के नाम से विख्यात है, उस पे भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस हैं अशोक के, समुद्रगुप्त से लेके और भी बाद के तोमर राजाओं के और चौहानों के। तो ये सारे जो शिलालेख हैं वो क्रमबद्ध तरीके से एक एक सोर्स के माध्यम से सुरक्षित रहे हैं। तो जब धीरे

0: डेवलपमेंट हुआ तो कॉपर प्लेट्स आने लगी। तो कॉपर प्लेट्स ज्यादातर जो है वो भूमिदान जब दी जाती थी
1: जी,
0: तब इसके ऊपर जो है लेख खुदा कर उस भूमि के बारे में जानकारी अंकित करके वो उस संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाता था।
1: जी,
0: तो जो लंबे समय तक हजारों वर्षों से हमारे यहाँ राजस्थान राज्य अभिलेखागार में कॉपर प्लेट्स का एक बहुत खूबसूरत संग्रहालय है, मतलब श्रृंखला है कॉपर प्लेट्स की। पिछले 1100 वर्ष में जितने भी कॉपर प्लेट्स राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में बनाए गए थे, लिखे गए थे, वो सब वहाँ देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा।
0: जब विकास क्रम बढ़ा और भोजपत्र है, ताड़पत्र है, फिर आगे चलकर कागज का आविष्कार हुआ, तब ये सारी जो घटनाओं का जो लेखा जोखा होता है
1: जी,
0: किसी भी राज्य या कालखंड की घटना जब लिखी जाती है तो उसे अभिलेख की श्रेणी में रखा जाता है
1: जी,
0: और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय अभिलेखागार है जो इन सभी भारतीय अभिलेखों को सुरक्षित रखता है, और राजस्थान में राजस्थान राज्य अभिलेखागार इसका सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है।
1: जी सर, सर आपने हमें सोर्स के बारे में भी बताया और आपने हमें कुछ टाइप्स भी ये आपने बताया, जैसे पत्थर है, ताम्र है, और फिर जब कागज़ की कागज़ चलन में आया तो कागज़ पे उकेरने लगे इन चीज़ों को, तो इस तरीके से जो इसके टाइप्स हैं अभिलेख के, तो उसमें और हमारे श्रोताओं को आप क्या जानकारी में इजाफा करेंगे कि और किस तरीके से उनकी जानकारी बढ़ सकती है इस चीज़ को लेकर के।
0: वैसे तो सबसे ओल्डेस्ट जो हमारी सभ्यताओं का जो विकास क्रम देखते हैं तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और अभी
1: जी,
0: जो
1: बिल्कुल
0: बाद की जो सोनोली वगैरह की जो सभ्यताओं में जो अवशेष मिले, तो मिट्टी के जो पात्र हैं तो मिट्टी की स्लेट्स मिली है हमारे पास में, और मिट्टी के बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनके ऊपर अक्षर खुदे हुए हैं
1: जी।
0: तो हम मान सकते हैं कि हमारे देश के सबसे प्राचीनतम सोर्स के रूप में हम उन्हें देखते हैं। और आगे चलकर पत्थरों पर उत्कीर्ण, चूंकि पत्थर जो है वो हवा और पानी के घर्षण से नष्ट होता जाता है, तो उसके लिखे हुए लेख धीरे धीरे क्षीण हो जाते हैं,
1: क्षीण हो जाते हैं।
0: और फिर कॉपर प्लेट्स का जब विकास हुआ तो उसको इसका माध्यम बनाया गया। लेकिन भोजपत्र हमारे देश में बहुत प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जिनके ऊपर विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियां और अभिलेखों को लिपिबद्ध किया गया
1: जी सर।
0: और फिर हमारे देश का जो समुद्री इलाका है, दक्षिण भारत में सबसे अधिक ताड़ पत्र होते हैं, ताड़ का जो वृक्ष होता है उसकी पत्तियों को कागज का स्वरूप दिया जाता है काट के उसे, और उसके ऊपर जो है वो नुकीली कीलों से जो नोबदार कलम होती थी उससे वो लिखे जाते थे
1: जी।
0: तो ये बहुतायात संख्या में हमारे देश में उपलब्ध है, लाखों करोड़ों की संख्या में।
1: हाँ जी।
0: और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया लगा कि भाई इनको हम लॉन्ग टर्म के लिए कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, तो फिर 13वीं शताब्दी में जब कागज, वैसे तो इतिहासकार और विभिन्न स्रोत ये कहते हैं कि कागज भारत में ही तीसरी से चौथी शताब्दी ईसा पूर्व विकसित हो चुका था, लेकिन फिर वो यहाँ से पलायन करते हुए कश्मीर से होकर वो बगदाद गया, बगदाद से उससे पहले चाइना गया, चाइना से बगदाद, और फिर वापस मुस्लिम एरा के समय में 13वीं शताब्दी में भारत आया। तो तब से बहुतायात में जो है वो ये अभिलेख हमारे देश में लिखे जाने लगे।
1: जी सर। श्रोताओं आपको बताएं, हमारे साथ हैं डॉक्टर महेंद्र सिंह तंवर, और जो बातें इनके लिए मैंने आपको बताई उसके साथ साथ आपको ये भी बताऊं कि आपने जो है काफ़ी इनकी पुस्तकें जो हैं वो भी प्रकाशित हुई हैं, लगभग 13 के करीब आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, और श्रोताओं कम से कम 8 जो किताबें हैं उसमें सह संपादन भी डॉक्टर महेंद्र सिंह का रहा है। सर वापस आते हैं अभिलेख की तरफ, तो जैसा कि इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे को हमारी सारी सभ्यताओं के बारे में पता चलता है, आपने इतना कुछ बताया, अब इनके संरक्षण के लिए क्या किया जाता है सर? अभिलेखों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, तो इनके लिए क्या किया जाता है ये हमारे श्रोताओं को बताएं।
0: वैसे तो हमारे देश में हमेशा से जो है वो इनको बहुत सम्मान दिया जाता है। अभिलेख, चूंकि अभिलेख के साथ बहुत सारी मूर्तियां उत्कीर्ण होती हैं,
1: जी सर,
0: वो हमेशा पूजनीय रही हैं, तो इस वजह से ये सारे स्मारक और अभिलेख निरंतर समय के साथ संरक्षित होते रहे। लेकिन 17वीं-18वीं शताब्दी के बाद भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य विकास हुआ और विस्तार के साथ साथ बहुत सारे ऐसे अंग्रेज विद्वान भी भारत में आए जिन्होंने भारत के इतिहास को लिपिबद्ध अपने दृष्टिकोण से करने का प्रयास किया, तो जॉर्ज प्रिंसेप्स जो थे, स्मिथसन है, कनिंघम है, ये ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे भारत के अलग अलग प्रांतों में भ्रमण करके इन अभिलेखों को खोजा। उन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को पहली बार पढ़ा और देखा
1: जी।
0: जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भारत आदिकालीन समय से जो है वो एक समृद्ध सभ्यता का स्वरूप रहा है
1: जी।
0: तो फिर उन्होंने ही एक विभाग की स्थापना की, तो पहला जो है वो विभाग अंग्रेजी शासन काल में बना था, और फिर रॉयल एसेटिक

0: सोसाइटी जब लंदन बनी तो एपिग्राफी ऑफ इंडिका नाम से एक जर्नल पब्लिश होने लगा, जो पिछले 150 साल तक भारत की समृद्ध इन अभिलेख श्रृंखलाओं को जो है वो निरंतर प्रकाशित करता रहा है।
1: अगर
0: हम राजस्थान की बात करें तो हमारे राजस्थान में पिछले 1500 वर्ष के अभिलेख निरंतर प्राप्त हो रहे हैं।
1: अच्छा।
0: तो चौथी पांचवीं शताब्दी के शिलालेख भी उपलब्ध हैं, लेकिन बहुतायात संख्या में अगर आप देखें तो छठी सातवीं से लेके 18वीं-20वीं शताब्दी के मध्य के तो सैकड़ों अभिलेख उपलब्ध हैं। मारवाड़ में जो है वो सबसे प्राचीनतम अभिलेख ओशिया में देखे जा सकते हैं, कुचकला में देखे जा सकते हैं, घंटियाली में देखे जा सकते हैं, केराड़ू में देखे जा सकते हैं। ये प्रमुख स्थान है जहाँ तत्कालीन सभ्यताओं के अवशेष के रूप में ये अभिलेख विद्यमान है। बहुत बड़ी श्रृंखला है इन अभिलेखों की।
1: जी सर।
0: और मंडोर में जो हमारा संग्रहालय है वहाँ पर इन अभिलेखों को देखा जा सकता है। तोरण द्वार पे जो अंकित हमारा अभिलेख प्रतियारकालीन जो है वो मंडोर के, वो हमारे सरदार संग्रहालय में संरक्षित रखे हुए हैं।
1: जी सर।
0: तो ये बड़े महत्वपूर्ण अभिलेख रहे हैं जिन्हें समय समय पर सरकारों के द्वारा और राज्य के द्वारा संरक्षित किया जाता था।
1: जी सर।
0: स्वतंत्रता के बाद इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे देश में जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कुछ राज्यों के अंदर जो है वो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो इस तरह के अभिलेखित श्रृंखलाओं का दस्तावेजीकरण करें और संरक्षित करें। तो उनके द्वारा ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी बहुत जगह पर डिक्लेयर किए गए, लेकिन इनकी संख्या सैकड़ों नहीं लाखों करोड़ों में है।
1: अच्छा।
0: हर गाँव में आपको 5 से 10 देवलियां मिल जाएगी, शिलालेख मिल जाएंगे। इनकी भी एक अलग कैटेगरी होती है, एक तो देवली होती है जो किसी स्मारक के रूप में स्थापित होती है, व्यक्ति की घोड़े पर अश्वार मूर्ति और उसके सामने सती को जो है वो दर्शाया जाता है, और नीचे वो लेख खुदावा होता है जो अभिलेख कहलाता है।
1: अभिलेख कहलाता
0: है। इसी तरह से हमारे यहाँ पर गोवर्धन स्तंभ लगाने की बहुत प्राचीन परंपरा रही है। जितने भी मंदिर बनते हैं, जितने भी तालाब खुदवाए जाते हैं, जितनी भी बावड़ियां बनाई जाती है, प्रत्येक बावड़ी, प्रत्येक तालाब और प्रत्येक जो है वो मंदिर के आगे एक गोवर्धन स्तंभ लगाने की परंपरा रही है। गोवर्धन स्तंभ बहुत ही खूबसूरत एक पिलर होता है, 8-9 फीट का, जमीन के अंदर उसको 3-4 फीट डाला जाता है और उसपे वो पूरा लेख खुदावा होता है।
1: अच्छा।
0: और बहुत सारे प्रशस्तियां भी उसमें जो है वो खुदी हुई होती है। तो आप जोधपुर में जितने भी प्राचीन मंदिर है हमारे, बावड़ियां जितनी भी है, हर एक के बाहर ये आप गोवर्धन स्तंभ देख सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, ब्रह्मा, महेश, शिव भगवान और इंद्र की मूर्तियां हैं, कहीं पर गणेश भगवान की मूर्तियां हैं, और फिर नीचे शिला लेख उत्कीर्ण होता है उसमें। और इसी तरह से आगे चलकर कई शासक जिन्होंने अपनी प्रशस्तियां या गौरवशाली घटनाओं का लेखा जोखा लिखा, तो उन्हें हम कीर्ति स्तंभ भी कहते हैं। सूरसागर के जो महल है, हमारे प्राचीन महल है, उनके पास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कीर्ति स्तंभ स्थापित है, जो महाराजा अजीत सिंह जी ने जब 1707 में 29 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में जोधपुर को प्राप्त किया वापस, औरंगजेब से छीना, वापस लिया, तब उस विक्ट्री के लिए उन्होंने जो है वो कीर्ति स्तंभ लगवाया था। तो उस कीर्ति स्तंभ में मारवाड़ की गौरवशाली उस स्वतंत्रता संग्राम को जो है वो दर्शाया गया कि किस तरह से उन्होंने मारवाड़ का मुक्ति संग्राम लड़ा था।
1: जी।
0: और सभी शासकों की वंशावलियां हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अभिलेख हमारी भाषाओं को संरक्षित करते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: तो अगर आप हम प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल तक के अभिलेखों को देखते हैं तो हमारे यहाँ ब्राह्मी और अलग अलग जितनी प्रकार की लिपियां, शारदा लिपि है, खरोष्ठी लिपि है, ये सब लिपियां हम उनको इन अभिलेखों के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि पांडुलिपियां जो है वो इतनी अधिक पुरानी हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। लेकिन ये अभिलेख हमें हमारी लिपि का ज्ञान देते हैं, ये अभिलेख हमें शब्दों के और अंकों का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं, और किस तरह से पूरे देश में अलग अलग कालखंड में इनमें परिवर्तन हुआ है वो भी इससे जाना जा सकता, पहचाना जा सकता।
1: जी सर। सर, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ है, इतनी महत्वपूर्ण बातें आपने बताई और हमारे श्रोता जो हैं इससे ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। एक बात और दिल में आ रही है कि हम देखते हैं कि जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये इतना महत्वपूर्ण दस्तावेज की तरह है और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इस पर लिखी होती है, लोग उसे डिस्ट्रॉय करते हैं, मतलब कुछ भी उस पर, मतलब कहते हैं ना कि जो पब्लिक प्लेस पे है तो वहाँ पे इनका जो संरक्षण है उसके लिए आप हमारे यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: हम लोग इंटेक और अन्य संस्थाओं के माध्यम से लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये अभिलेख केवल एक जाति विशेष या एक वर्ग विशेष के नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल शासक वर्ग के ही अभिलेख उपलब्ध होते हैं। देवलियां और शिलाखंडों का यदि आप ढंग से देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो हमारे समाज के सभी वर्गों के पूर्वजों के

0: ये शिलालेख हमको प्राप्त होते हैं। अब प्रत्येक गांव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के ये शिलालेख हमको देखने को मिलते हैं। अब समस्या ये है कि जब तक हमारा डायरेक्ट लगाव नहीं होता किसी भी चीज से, तब तक हम उसे अपनी नहीं मानते,
1: अपनी नहीं मानते।
0: एक विचारधारा विकसित हो गई है हम लोगों के अंदर,
1: बिल्कुल,
0: जबकि वो हमारी नहीं है तो, लेकिन हमारे से पहले के किसी, हमसे पहले वाले लोगों की होगी,
1: बिल्कुल,
0: जो हमारे कहीं ना कहीं अपने हैं,
1: जुड़ाव तो है, बिल्कुल सही।
0: वो चाहे रिश्तेदार हो, गिनायत हो, कुछ भी हो सकते
1: हैं
0: वो हमारे, वो हमारे साथ ही रहे होंगे। तो ये जो भावना है, इस वजह से इन शिलालेखों को उपेक्षित कर दिया गया, छतरियों को उपेक्षित कर दिया गया, जिस वजह से ये बहुत सुंदर विरासत जो है वो धीरे धीरे नष्ट हो रही है।
1: जी,
0: तो सरकार से और हमारी बहुत सारे संगठनों के माध्यम से भी ये प्रयास रहा है, गवर्नमेंट भी इसमें अच्छा प्रयास करती है
1: जी,
0: लेकिन इसको यदि पूर्ण रूपेण संरक्षित करना है, जिससे हमारी लिपि बच सके, जिससे हमारे गौरवशाली इतिहास की श्रृंखलाएं बच सके
1: जी,
0: और जिससे ये मूर्ति शिल्प कला और पत्थरों पर जो आकृतियां बनाने की जो कला है, यदि हम आने वाली पीढ़ियों को सिखाएं, आज हम आर्किटेक्चरल कंजर्वेशन की बात करते हैं, आर्किटेक्चरल स्टडी की बात करते हैं, बहुत सारे नए नए कोर्सेज जो है वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन उनके सोर्स यही हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं।
1: सही।
0: तो हमें लगता है कि आर्कियोलॉजी विभाग जो है वो इतने सारे अभिलेखों को संरक्षित नहीं कर सकता, इसलिए पंचायत स्तर पर, ग्राम स्तर पर और जिला इकाइयों के स्तर पर हमें एक सरकारी आदेश के माध्यम से इनको संरक्षित करने की पहल करनी चाहिए, जिसमें ये केवल स्थानीय क्षेत्र के लोग इसका जो है वो संरक्षण करें। ऐसे अधिकार पंचायत समितियों के पास हो तो जरूर जो है वो इन अभिलेखों का संरक्षण हो सकता है। जो अभिलेख बिखरे पड़े हैं तो पंचायत भवनों में उन्हें एक छोटे संग्रहालय के रूप में भी जो है वो संरक्षित किया जा सकता है। इससे स्थानीय बच्चे जो है वो उनका भ्रमण करके उनको बहुत कुछ अपने इतिहास का ज्ञान हो सकता है, पूर्वजों के बारे में वो जान सकते हैं
1: जी।
0: और चूंकि जो है वो हवा, पानी और प्रकृति से इनको बहुत नुकसान होता है, तो ये जरूरी है कि समय समय पर इनको संरक्षित करने के प्रयास किए जाएं। और एक गजट नोटिफिकेशन यदि सरकार निकाल दे कि इन्हें पंचायत स्तर पर जो है वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया जाता है, स्थानीय मॉन्यूमेंट डिक्लेयर हो सकते हैं, तो फिर हमारे लाखों करोड़ों जो इंस्क्रिप्शन हैं, अभिलेख हैं, वो बचाए जा सकते हैं। हमने एक संगठन खड़ा किया था, सेव ओवर हेरिटेज फाउंडेशन, और उस फाउंडेशन में अभी हमारे करीब 2000 से ज्यादा व्हाट्सएप पे जो है वो ग्रुप में लोग जुड़े हुए हैं, पूरे राजस्थान से और राजस्थान के बाहर के। और हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो इन अभिलेखों को पढ़ने में जो है वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, इन अभिलेखों को लाइव पढ़ा जाता है और व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक के माध्यम से दुनिया को ये जानकारी दी जाती है कि ये आपके पूर्वज हैं, ये आपके अभिलेख हैं, इनसे आपकी गौरवशाली परंपराएं जुड़ी हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हर गाँव का अपना एक अभिलेख होता है जो उस गाँव की स्थापना की जानकारी देता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो अगर आपको पता करना हो कि आपका गांव कितना
1: पुराना
0: है, अभिलेख ही ये कीर्ति स्तंभ आपकी जानकारी दे देगा कि ये तालाब खुदवाया और गांव बसाया
1: जी जी,
0: और किसने करा, किसके द्वारा किया गया,
1: ये पूरी जानकारी उसमें मिल जाती है।
0: तो इसलिए यदि जिनके संरक्षण के आसपास क्षेत्र में है, अगर वही संस्थाएं इसका संरक्षण करती है तो बहुत बड़ा काम हो सकता है।
1: जी सर जी। श्रोताओं, फोन के माध्यम से हमारे साथ जुड़े डॉक्टर महेंद्र सिंह तमर, संयोजक भारतीय राष्ट्रीय कला विरासत न्यास इंटेक जोधपुर चैप्टर, और इतनी कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छी उम्दा जानकारी और एक अवेयरनेस जो है उन्होंने इस माध्यम से लोगों में दी है, और हम उम्मीद करते हैं कि सर ने जो बातें हमसे शेयर की हैं उनकी वैल्यू को हम समझेंगे और इसके संरक्षण में हमारी जो जिम्मेदारी है उसे ज़रूर निभाएंगे। डॉक्टर साहब, आप हमारे फोन के माध्यम से हमारे स्टूडियो से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: आपका भी बहुत आभार, और मुझे अवसर देने के लिए, मेरी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए, और मैं पूरी उम्मीद रखता हूं कि आपके माध्यम से हमारी राष्ट्र की ये बहुमूल्य धरोहरें जरूर सुरक्षित होगी और संरक्षित की जाएगी।
1: जी सर, इसी उम्मीद के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया।

श्रोताओं, आज है मंगलवार और मंगलवार के दिन जो स्पेशल सेगमेंट होता है वो होता है आओ जाने खेल। और आओ जाने खेल में आज हम आपके लिए जो जानकारी लाए हैं वो है टेक बॉल्स।

तो श्रोताओं, आज हम खेलेंगे टैग बॉल्स, और ये उन लोगों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग गेम है जो कहते हैं ना कि डिजिटल गेम्स में अपना रुझान रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। स्मार्टफोन और पीसी पर खेले जाने वाले लोकप्रिय 3D कैजुअल और बैलेंसिंग गेम्स। इन खेलों में एक गेंद को नियंत्रित करके बहुत सारे हर्डल्स को पार करना होता है। ये खेल जो है सरल नियंत्रण यानी कि वन फिंगर स्वाइप और शानदार ग्राफिक्स के लिए जाने जाते हैं। श्रोताओं, टेक बॉल्स इसकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उसमें गेम प्ले, खिलाड़ी को एक लुढ़कती हुई गेंद को रास्ते पर आगे बढ़ाना होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या बड़ी बात है। जी हाँ, इसमें बड़ी बात यह है कि रास्ता सीधा नहीं होता। इस रास्ते में कई घुमाव होते हैं, ढलान होती हैं और होती हैं बहुत सारी बाधाएं जिन्हें पार करना होता है। और कंट्रोल इसे खेलना बहुत आसान है। स्क्रीन पर एक उंगली से आप स्वाइप करके गेंद को दाएं बाएं मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है श्रोताओं, वो ये होता है कि हर लेवल पर रास्ते में कुछ कॉइन्स होते हैं या फिर कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, तो उनको इकट्ठा करते हुए आपको अंत बिंदु यानी कि फिनिश लाइन तक सुरक्षित पहुंचना होता है। कस्टमाइजेशन की अगर बात करें तो गेम में आगे बढ़ने और सिक्के कमाने पर आप अपनी गेंद का रूप यानी कि कलर डिज़ाइन बदल सकते हैं। और ये गेम जो है मोबाइल ऐप पे या फिर कंप्यूटर पर आप खेल सकते हैं श्रोताओं, और अपनी डिवाइस पर आप ऐप स्टोर पर जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको ये कहेंगे कि ये जो गेम है इससे आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, फोकस को बढ़ा सकते हैं, और किस तरीके से सिचुएशंस को कंट्रोल किया जा सकता है उसे बढ़ा सकते हैं।

0: श्रोताओं, आज 9 जून जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस बन जाता है, क्योंकि भारतीय इतिहास के एक महान नायक, जननायक और आदिवासी समाज के भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा का शहीद दिवस है। इस दिन हम उनके अद्वितीय साहस, अदम्य भावना और अंग्रेजों के खिलाफ उनके कार्यों को याद करते हैं। श्रोताओं, मात्र 25 वर्ष की अल्पायु में उन्होंने जो वीरता और क्रांति का परिचय दिया, वो सदियों तक देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
1: साथ ही श्रोताओं, आज भारतीय योग जगत के प्रसिद्ध योगाचार्य धीरेन्द्र ब्रह्मचारी की पुण्यतिथि हम मना रहे हैं। वे योग के जन जन तक पहुंचाने वाले अग्रणी व्यक्तियों में गिने जाते हैं। योग को केवल साधना का माध्यम नहीं माना उन्होंने, बल्कि उसे स्वस्थ जीवन और शारीरिक मानसिक संतुलन का विज्ञान भी बताया। और दूरदर्शन पर प्रसारित उनके लोकप्रिय कार्यक्रम योगाभ्यास ने लाखों लोगों को योग से परिचित कराया। उस समय जब योग घर घर तक नहीं पहुंचा था, तब धीरेन्द्र ब्रह्मचारी ने इसे सरल और व्यवहारिक रूप से प्रस्तुत किया था। और योग पर कई पुस्तकें भी उन्होंने लिखी और अनेक योग संस्थानों की स्थापना भी की। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि अनुशासित और संतुलित जीवन की कला है।
0: तो श्रोताओं, ये था आज का नमस्कार। दीजिए अनुमति नमस्कार की पूरी टीम को। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत।

श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 11 बजने को है। श्रोताओं, आइए अब आपको हम सुनवाते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में ये पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म खूबसूरत से। आवाजें कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत के बोल संजय छैल के हैं और संगीत जतिन ललित का।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म राजा हिंदुस्तानी से। आवाजी कुमार शानू और अलका याग्निक की है। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत बत किया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, ये गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म कुछ कुछ होता है से, इसमें आवाजें उदित नारायण, अलका याग्निक और कविता कृष्णमूर्ति की हैं। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत का जादू बिखेरा है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में आइए अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म मोहब्बती से। आवाजें उद्भव मनोहर सेठी, ईशान प्रतिभा मजूमदार की है। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया जतिन ललित ने।

श्रोताओं, आइए फिल्म संगीत में ये अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म वीर जारा से। आवाजें अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की हैं, शब्द रचना जावेद अख्तर की और संगीत रचना मदन मोहन की।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत में आइए अब आपको ये गीत सुनवाते हैं हम, जिसे हमने लिया है फिल्म रेफ्यूजी से। गीत को गाया है सोनू निगम ने, लिखा जावेद अख्तर ने, और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

फिल्म संगीत में आइए, अब आपको ये गीत हम सुनवा रहे हैं फिल्म सुहाग से, जिसमें आवाजें हैं कुमार शानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत का जादू बिखेरा है आनंद मिलिंद ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए, अब आपको सुनवाते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म जीत से। इस गीत को गाए है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत बद किया नदीम श्रवण ने।

श्रोताओं, फिल्म संगीत में आइए, आपको आखिरी गीत सुनवा रहे हैं फिल्म बॉर्डर से, जिसे गाया है रूप कुमार राठौड़ ने, गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीतबद्ध किया अनु मलिक ने।

श्रोताओं, इस फिल्मी गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 12 बज रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं अगला प्रोग्राम, लोक संगीत। श्रोताओं, लोक संगीत में ये पहली लोक रचना हम आपके लिए लेकर आए हैं, मोती खां की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, लोक संगीत के इस प्रोग्राम में अगला लोक रंग हम आपको सुनवा रहे हैं, ऋचा शर्मा का गाया हुआ।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं आप प्रोग्राम सुन रहे हैं लोक संगीत। लोक संगीत में आइए अब ये रचना हम आपको सुनवा रहे हैं शमसुद्दीन की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: शुद्धम लोक संगीत में ये आखिरी लोक रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, चंपा मिति पार्टी की गाई हुई।

श्रोताओं, इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है हमारी अगली पेशकश सुगम संगीत। सुगम संगीत में श्रोताओं, ये पहली रचना हम आपको सुनवा रहे हैं सोनाली और रूप कुमार राठौड़ की गाई हुई।

0: हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। गली गली।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी।

0: रिटर्न गणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: सुगम संगीत में श्रोताओं ये रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, अभिदा प्रवीण की गाई हुई।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत में आइए अब आपको सुनवाते हैं चित्रा सिंह की गाई हुई ये रचना।

0: जनगणना 2027 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए, उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में आइए आखिरी रचना हम आपको सुनवा रहे हैं, चंदन दास की गाई हुई।

0: श्रोताओं, इस रचना के साथ ही सुगम संगीत का ये प्रोग्राम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन की आज से इंदौर में शुरुआत हुई। इस सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं, जिनमें ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। आज के सत्रों में खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती और कृषि नवाचार पर चर्चा से टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के निर्माण में मदद मिलेगी। ये विषय छोटे किसानों के सशक्तिकरण और वैश्विक कृषि व्यापार को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। इसमें छोटे किसानों, महिलाओं और युवाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आज राष्ट्रव्यापी समारोह आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा नई दिल्ली में इसकी शुरुआत करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती हैं। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। इस बीच प्रदेश में भी आज प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखे गए हैं। विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में महिलाओं के लिए निशुल्क जांच शिविर लगाए गए हैं। साथ ही स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों के आशीर्वाद और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज देश ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल क्रांति तक वैश्विक मंच पर एक नई पहचान हासिल की है। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि विकसित भारत के अपने संकल्प को साकार करने के लिए सरकार सेवा, सुशासन और समृद्धि के इस पथ पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा डीग जिले के प्रवास पर हैं। उन्होंने आज डीग स्थित श्रीनाथ जी मंदिर प्रांगण में धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की। श्री शर्मा कल डीग पहुंचे थे। उनके साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद हैं। राज्य के पश्चिमी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी का असर बढ़ गया है। दिन के समय सूरज की तपिश और गर्म हवाएं जनजीवन को प्रभावित कर रही हैं। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। राजधानी जयपुर, कोटा, चित्तौड़गढ़, जालौर, सीकर, झुंझुनू में पारा 40 डिग्री पर रिकॉर्ड हुआ। कल 45.6 डिग्री सेल्सियस के साथ श्रीगंगानगर में सबसे गर्म दिन रहा। वहीं फलौदी में 44.8, जैसलमेर और बीकानेर में 44, चूरू में 43.5 और बाड़मेर में 42.8 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान रहा। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी होने की संभावना व्यक्त की है। वहीं आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं

0: बरसात हो सकती है। राज्य के सरकारी स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां 28 जून तक रहेंगी। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार ग्रीष्मावकाश की अवधि बढ़ाकर 43 दिन कर दी गई है। पहले ये 17 मई से 20 जून तक 35 दिनों की थी। आदेश के अनुसार संस्था प्रधान की ओर से एक अवकाश के स्थान पर अब 2 दिन की छुट्टी दी जा सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800117800 पर भेज सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 1:05 हुए हैं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किसान साथियों का अपना कार्यक्रम कृषि जगत।

आपा खेती बाड़ी रा काम काज कर रिया हाँ, खेत तैयार कर रिया हाँ, बढ़िया मिट्टी ने अच्छी बना रिया है, साथ साथ खाद है, उर्वरक है, इनरो प्रयोग भी किसान भाई खेत रे मैंने लगो लग आपरे कर रिया है। किसान भाइया लाल दिन आपने जानकारी दी रही भाई बाजरो है, ज्वार है, गंवार है, उनरे जी की उन्नत किस्म है, वे किसी किसी है और आप काम में ले सका खेत रे मैंने बवन वास्ते। आज आपने जानकारी दिला रहा हाँ कि भाई दलहनी जी की फसला है, उनरी उन्नत किस्मा जी की है, वे किसी किसी है। किसान भाई री कोशिश आईज रहे कि भाई आप रे खेत रे मैंने फसल चक्र अपनावे, कदी गंवार भवे, कदी मूंग मोट आप रे भवे। आज आपने जानकारी दी रहा कि भाई मूंग री जी की उन्नत किस्मा है, इन महीने जीव आप बात करा SML 832 है, इंडी जी की पकावरी जी की अवधि है वह 60 से 65 दिन मुहैया करे। इन किस्म सु जी को उत्पादन है वो प्रति हेक्टेयर महीने 11 से 12 क्विंटल रिया करे। हम मूंग रे महीने दूजी किस्म और है RMG 268 और 344, इंडी पकाव अवधि 65 से 70 दिन रिया करे और उत्पादन जी को है वो 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रिया करे। मूंग रे महीने किसान भाई एक और किस्म काम में लिया करे MUM 2, पकाव अवधि 60 से 70 दिन और उत्पादन जी को है 12 से 15 क्विंटल लंगर टंगे प्रति हेक्टर में रिया करे। मूंगा रमाइने MH 421 बिया किस्म है, 60 से 65 दिन रमाइने पक जाया करे, उत्पादन जी को है इन किस्म सु 11 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। मूंगा रमाइने GM 4 है, 61 से 68 दिन पकावरी अवधि, 13 से 14 क्विंटल प्रति हेक्टर उत्पादन रिया करे। RMG 492 मूंगा रिया किस्म है, इनरी पकाव अवधि 65 से 70 दिन रिया करे और उत्पादन जी को है इन किस्म सु 14 से 18 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। हमें बात आवे किसान भाई ने कि भाई बीजरी जी की मात्रा है वह आप कृत्रिम ला, तो ए जी की किस्मा जी की जानकारी आपने दे रही, इनारे वास्ते 15 से 20 किलोग्राम जी को है वो आप प्रति हेक्टर हिसाब बीज काम में ले सका। हमें फसल बावणु पहला आप उर्वरक देवनी चावा बुआई पहला जी, हमें DAP और यूरिया जो को मिश्रण है वो 90:10 रे महीना आप दे सका। और कई किसान भाई मान लो ओ मिश्रण नहीं देवे तो SSP और साथे यूरिया जो को मिश्रण है इनो जो को अनुपात है वो 250:45 रूप में आप दे सका। मुंगारी आप बीज बामा इंड्र महीने कतार जी की है वह 30 सेंटीमीटर री छेती माते रखनी चाहिए और पौधों पौधारी जी की दूरी है वह 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। हमें बात आवे कि भाई ए जी की आप किस्मा हमार जानकारी दे रही, तो इनारी विशेषता है कि भाई पीला मोजेक है साथे जो को थ्रिप्स है इनके प्रति सेंसिल रिया करे। किस्मा रे महीने जाइद खरीब रे वास्ते जुलसा जीव है, पत्ती दब्बा रोग रोधी भी हुआ करे और अगले राजस्थान रे महीने पर बात करा सूखा सेंसिल शक्ति भी रहा क्या करे, पित्त विषाणु रोग रे प्रति भी सेंसिल रिया करे और एक साथ पकाओ वे आना बीजरो और दाना जी का है सुडोल वे और मोटा वे और खरीफ रे वास्ते और जाइद रे वास्ते दोहे रे वास्ते बढ़िया हुआ करे क्योंकि इन किस्मत जिको झुलसा जी को रोग है ए रोधी हुआ करे। हमें बात आवे की भाई मोट आपा खेता रे महीने भावनी चावा, तो मोटा रे महीने जीव उन्नत किस्म है CZM 2, इंड पकाव अवधि 65 से 67 दिन रिया करे, उत्पादन 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टर रिया करे। मोटर मैंने एक किस्म और है किसान भाइया RMO 2251, इंड भी पकावरी जी की अवधि है वह 62 से 65 दिन रिया करे। इंड साथ और किस्म है जीव है RMO 257, RMO 225, RMO 435, मरु बाहर आपा क्या करा, इन हैंग किस्मारी जी की पकाव अवधि है वह 62 से 65 दिन तक रिया करे और इन किस्मारो जी को उत्पादन है वो प्रति हेक्टर 6 से 9 क्विंटल लंगे टंगे हुआ करे। हमें मोठारी जी की आ किस्म है, इंद्र महीने बीजरी जी की दर है वह आपने 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर रिया करे और जो हमें बीज बावणु पहला आप उर्वरक देवनी चावा DAP और यूरिया जी को है वो अनुपात है वो DAP आप दे दा 66 किलोग्राम प्रति हेक्टर और कई मान लो किसान भाई SSP प्लस यूरिया देनी चाहे तो उन जी को अनुपात है मोटरी फसल वास्ते वो रहे भाई 190:25 और पौधारी जी की कतारों कतार जी की छेती है वह आप 45 सेंटीमीटर रखे, पौधों पौधारी जी की छेती है वह 15 से 20 सेंटीमीटर अपने रखनी चाहिए। ए किस्मा आप काम में लेवा किसान भाई, एक तो जल्दी पाक जा साथ है पित्त शिरा मोजेक प्रतिरोधी हुआ करे, विषाणु रोग रे प्रति भी या प्रतिरोधी रिया करे, जल्दी पक जाया करे और इन महीने जो RMO 225 है आ शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र वास्ते बढ़िया मानी जा करे, साथ है सूखा सहनशील शक्ति जी की है वह इनके समय ज्यादा है। RMO 435 मरु बाहर आपा किया करा आ भेगी पकड़ने वाली फसल जी की है आ मोटर महीने रिया करे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई दलहनी फसला मूंग है मोट है इनकी किसी किसी किस्म आप अपने खेता में बा सका और उन्नत तकनीक अपनावता तका खरीफ फसल जिकी पैदावार है इन महीने आप वृद्धि कर सका। कृषि जगत प्रोग्राम रो वगत पूरा वेरियो है आपरे साथी दिनेश राणे जाने शेख दिराओ राम राम।

श्रोताओं, दिन के 1:15 होने को हैं। लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारीवाड़ी का सुनने वाली सभी सखियों, बहनों और माताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
1: बिल्कुल, आज का नारीवाटी का कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी रेडियो सखी आशा अडवाणी और मेरे साथ हैं
0: मैं हूं आपकी रेडियो सखी खुशबू। सखियों, आज की इस वाटिका में हम जो है, वैसे तो हर दिन जिंदगी के खूबसूरत रंगों और सपनों की बातें करते हैं, लेकिन आज का जो दिन है, 9 जून का दिन है, वो बहुत ही खास है। और आज हमारे इस आंगन में बेहद ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है।
1: तो खुशबू, चलिए आज के दिन को खास बनाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: सखियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम नारी वाटिका में। और कहते हैं नारी वाटिका यानी एक ऐसा उपवन जहां हर फूल की अपनी महक है, अपनी कहानी है। क्यों आशा जी?
1: बिल्कुल बिल्कुल। और आज हम ऐसे फूल की बात करेंगे जिसकी खुशबू, जिसकी महक आज भी ज्यों की त्यों बरकरार है।
0: जी
1: एक ऐसी शख्सियत जिससे हम आज भी प्रेरणा पाते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज की रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़कर सफलता का एक नया इतिहास रचा। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे जहन में अनुशासन आ जाता है, साहस आ जाता है और एक ईमानदारी की तस्वीर उभर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी, महिला सशक्तिकरण की जीवंत मिसाल डॉक्टर किरण बेदी जी की।
0: जी हाँ सखियों, और आज है इनका जन्मदिन। जब भी हम बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की, और जब ये शब्द हम सुनते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक आंदोलन बन जाता है। और इस आंदोलन का चेहरा बनी किरण बेदी, जिन्होंने रूढ़ियों को तोड़ा एक ऐसे दौर में जब बेटियों को घर की चारदीवारी में रहने की सलाह दी जाती थी। ये वो समय था जो बहुत ही बेटियों के लिए, मैम अगर बात करें हम लोग, तो एक ऐसा समय था ना कि उस समय पे कोई भी बाहर नहीं निकलने की इजाज़त देता था और बहुत रेस्ट्रिक्शंस भी रहते थे। उस समय किरण बेदी जी ने खाकी वर्दी पहनकर अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए।
1: और खुशबू, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। इतनी बड़ी पोस्ट को संभालना अपने आप में एक मिसाल है। और उनके जीवन की बात करें तो वो कठोर भी थी और संवेदनशील भी थी।
0: जी
1: उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला का दिल जितना संवेदनशील हो सकता है ना, उसका इरादा उतना ही वज्र जैसा मजबूत भी हो सकता है
0: यानी कि ईंट का जवाब
1: पत्थर
0: पत्थर
1: से।
0: से।

0: से दिया उन्होंने। सखियों बात करें उनकी, तो उन्होंने सुधारवादी सोच के साथ में अपना काम किया। उनका ये मानना था कि तिहाड़ जेल के कैदियों के जीवन में सिर्फ बदलाव लाना ही नहीं बल्कि उन्हें सुधारना भी है। जी हाँ, पुलिस का काम सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि उस इंसान की आत्मा को भी शुद्ध करना है, और किस तरीके से किसी इंसान को सुधारना है ये पूरी ताकत उनकी जो है उसमें लग जाती थी।
1: और ये सब इतना आसान नहीं होता है, बहुत सारी मुश्किलें भी आती है, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनका जवाब, जैसा कि आपने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, तो वो मशाल बनकर जली ताकि अंधेरा हार जाए, वो बड़ी कदम कदम पर ताकि हर नारी में निखार आए, न झुकी वो मुश्किलों के आगे, न थामा उनका कारवां, वो किरण है उस सुबह की जिससे रोशन हुआ सारा जहां।
0: क्या बात है आशा जी, और बहुत ही अच्छी लाइंस आपने कही, एकदम दृढ़। ये जो है हमें संकल्प लेना सिखाती है कि किस तरीके से किरण बेदी जी ने अपना जीवन संवारा है, और साथ ही उनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सशक्त होना कोई अधिकार मांगना नहीं है बल्कि अपनी स्वयं की काबिलियत को पहचानना है। उन्होंने देश की करोड़ों बेटियों को ये भरोसा दिया है कि अगर आपके इरादे मजबूत है तो आसमान की कोई भी ऊंचाई आपके लिए दूर नहीं है।
1: और देखो, वो सिर्फ पुलिस अधिकारी नहीं है, वे हर उस लड़की की हिम्मत है, हर उस लड़की का सपना है जो कुछ बड़ा करना चाहती है ना, वो
0: जी
1: सपना देखती है। तो आज हम सब मिलकर डॉक्टर किरण बेदी जी के इस जज्बे को सलाम करते हैं और अपने समाज की हर बेटी को आगे बढ़ने का, पढ़ने का, उड़ने का और सपना देखने का पूरा हौसला देते हैं।

0: खुशबू देखो सपने देना देखना बेहद ज़रूरी होता है,
1: जी
0: क्योंकि जो हमारे मन के भाव होते हैं हम उनको कोई ना कोई रूप देते हैं, यानी हम अपने सपने को आकार दे रहे हैं, हम खुश हो रहे हैं और हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं।
1: जी हाँ। और ये देखिए आशा जी, जब हम सपने देखते हैं ना, तो हम उन सपनों के भावों को ना कई बार पन्नों पर भी उकेर देते हैं, किसी रंग के रूप में, किसी कला के रूप में।
0: और चाहे हम कविता लिखते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं, या मिट्टी को कोई आकार देते हैं, या किचन में कोई काम करते हैं, या हाथ में हमारे सुई धागा हो, या कढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ और भी आप किचन में बना रही हैं, तो इन सब का फायदा ये है कि हमारा मन एकाग्र हो जाता है और जो भी हम अपना सपना जो हम बुन रहे हैं उसका आउटपुट बहुत अच्छा निकलता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप सपने देखेंगे तभी तो आप कुछ कर पाएंगे, और अगर आप बिल्कुल नीरस हो जाएंगे, कोई सपना ही नहीं देखेंगे, तो आपका जो जीवन है ना वो भी ऐसा हो जाएगा कि बिल्कुल जीने की इच्छा ही नहीं होगी। व्यक्ति को लगेगा कि नहीं, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारी अंदर के भावों को ख़त्म कर देती है।
0: और अगर आप कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जो आप पूरा करना चाहती हैं, तो कई सारे ऐसे सपने होते हैं जिनके लिए संघर्ष करना पड़ता है,
1: बिल्कुल
0: जिनके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है ना?
1: जी
0: और उस प्लानिंग के हिसाब से अगर आप उस सपने को टाइम देते हैं, तो एक समय बाद वो रिजल्ट आता ही आता है।
1: जी और जैसा आपने बताया, प्लानिंग और संघर्ष, इनके अलावा ज़रूरत होती है किसी सपने को पूरा करने के लिए एकाग्रता और मेहनत की। ये दो चीज़ें ऐसी हैं ना जिन्हें अगर आप अपना एफर्ट 100% अगर देते हैं ना, तो आपका कोई भी सपना कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। और साथ ही ज़रूरत होती है सखियों धैर्य की भी, क्योंकि धैर्य अगर होगा एकाग्रता और मेहनत के साथ, तो आप अपने सपने को अच्छे से देख पाएंगी और उसका रिजल्ट भी अच्छे से ले पाएंगी।
0: जब भी कोई हम काम करते हैं, कुछ ऊंचा सोचते हैं, बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं, तो कई सारे आसपास के लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: और ये कहते हैं, अच्छा आप तो ऐसा कर ही नहीं सकते हो।
1: जी
0: तो वास्तव में उनकी इस बात को पॉजिटिविटी में लेना है, सकारात्मक रूप में लेना है, ताकि वही जो चीज़ उनकी वो बात कही गई वो हमारे लिए एक मतलब वो बन जाए, वो आगे बढ़ाने का वो जज्बा बन जाए
1: जज्बा
0: हमारे
1: बन
0: लिए।
1: जाए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। कई लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको वहीं पे स्टॉप करने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल भी सखियों, हार नहीं मानना है। अगर आपने सपना देखा है तो उस सपने को जीना है और आगे बढ़ना है।
0: और साथ साथ एक बात कहना चाहूँगी खुशबू, कि हम अपना सपना पूरा कर रहे हैं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो
1: जी
0: हम अपने लिए कर रहे हैं, अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन के लिए। तो आप भी अगर सपने देख रही हैं तो उनको पूरा करने में पूरी कोशिश लगा दीजिए, तो आपका भविष्य भी सुंदर होगा, आपका सपना भी पूरा होगा।
1: जी

0: सखी, स्वागत है आपका एक बार फिर से कार्यक्रम नारी वाटिका में। और कहते हैं ना कि किसी ने सच ही कहा है कि तस्वीरें बोलती है, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जिनकी तस्वीरें सिर्फ बोलती नहीं बल्कि कैनवास पर नाचती है, गाती है और इतिहास लिख जाती है।
1: जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही फकीर की, एक ऐसे ही मसीहा की जिसे दुनिया भारत का पिकासो कहती है। वो ताउम्र बेयर फुटेड चला, यानी बिना चप्पलों के चला,
0: जी
1: लेकिन कला की दुनिया में जिसके कद की बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। और नाम था मकबूल फिदा हुसैन, यानी MF हुसैन।
0: जी हाँ सखियों, बात करें हुसैन साहब की तो इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनके ख्वाबों ने पूरी दुनिया को अपना कैनवास बना लिया। जी हाँ, आज हम इसलिए उनकी बात कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। और कहा जाता है कि शुरुआती दौर में सिनेमा के होर्डिंग्स पेंट करने वाले इस इंसान ने जब ब्रश थामा तो भारतीय आधुनिक कला का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए कहीं ना कहीं बदल गया।
1: और MF हुसैन की बात करें तो उनकी कला में बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारी विशेषताएं थी उनकी कला में। कला जो थी उनकी पेंटिंग्स की, सबसे बड़ी उनकी खूबी ये थी कि उनकी बोल्ड लाइंस, जबरदस्त रेखाएं। वे जब पेंटिंग करते थे तो जब भी कैनवास पर कभी रेखाएं बनाते थे तो एक बार में इतनी साफ इनकी लकीरें होती थी कि देखने वाला देखता ही रह जाता था।
0: बिल्कुल आशा जी, सही कहा। और बिना रुके वो पेंट करती थी, वो ब्रेक नहीं लेती थी। उनकी एक खास खासियत थी कि जब भी वो किसी पेंटिंग को बनाने बैठते थे ना तो बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेते थे जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती।
1: ये बहुत बड़ी बात है अपने
0: बहुत
1: आप
0: बड़ी
1: में।
0: बात है। और बात करें रंगों की अनूठी मेल की, तो ये उन जैसा मेल कोई नहीं बना सकता। अक्सर जो उनका था पेंटिंग में, वो चटक रंगों जैसे कि गहरा लाल, पीला और काली रंग का इस्तेमाल करती थी जो कि सीधे इंसान की भावनाओं पर असर करती थी।
1: एक और विशेषता थी उनकी इस कला में
0: जी
1: कि उन्होंने भारतीय लोक कला और हमारे प्राचीन कबीलाई आर्ट को मॉडर्न आर्ट के साथ मिला दिया था।
0: क्या बात है। और बात करें इनकी और पेंटिंग्स के बारे में, तो हुसैन साहब की कई सारी पेंटिंग्स में इंसानों के चेहरे साफ नहीं होते थे। जी हाँ सखी, आपने जरूर गौर फरमाया होगा, या तो वो धुंधले होते थे या साफ नहीं होते थे। और उनका ये मानना था आशा जी कि चेहरे से ज्यादा इंसान की बॉडी लैंग्वेज और उसके आसपास का

0: माहौल उसकी कहानी को बयां करता है।
1: और खुशबू, उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स ऐसी हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है।
0: जी
1: द लैम्प एंड द स्पाइडर, इस पेंटिंग में उन्हें जो 1950 के दशक में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय इस पेंटिंग ने दिलाई थी, पहचान उनको मिली थी।
0: जी और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट जो उनकी पेंटिंग है उसका नाम है ज़मीन। जी हाँ, बहुत खास ये रही थी। और इसमें भारत की गांवों, किसानों और हमारी धरती को समर्पित एक बहुत बड़ी और शानदार पेंटिंग उन्होंने बनाई थी।
1: तो इनकी पेंटिंग्स के बारे में हम बात करेंगे, और भी सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: सखी इस प्यारे सी गीत से पहले हम बात कर रहे थे कला क्षेत्र से जुड़े एक खास शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है M.F. हुसैन, और साथ ही बात कर रहे थे भारतीयता और आधुनिकता के उस संगम के बारे में जिन्होंने इसे बहुत अच्छी से उभारा पेंटिंग्स के रूप में, और कुछ खास पेंटिंग्स के बारे में भी हम बात कर रहे थे. आशा जी, तो बताइए अगली उनकी खास पेंटिंग कौन सी है?
1: अगली उनकी पेंटिंग है मदर टेरेसा के सेवा भाव से हुसैन साहब इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उनकी सफ़ेद और नीली बॉर्डर वाली साड़ी को केंद्र में रखकर कई कालजयी पेंटिंग्स बनाई थी.
0: जी, बात करें बिटवीन द स्पाइडर एंड द लैम्प. जी हाँ, इस पेंटिंग में इन्होंने भारतीय महिलाओं की स्थिति और उनकी अंतर विरोधों को भी दर्शाया था.
1: और रामायण और महाभारत की बात करें तो रामायण और महाभारत सीरीज, लगभग 150 से ज़्यादा पेंटिंग्स की ये सीरीज उनके जीवन का एक बहुत बड़ा काम थी जो काफ़ी सराहा गया था.
0: जी
1: और बहुत सारे किस्से हैं उनके जीवन के बारे में जो सचमुच उनको एक फकीर कलाकार बनाते हैं.
0: जी
1: तो जैसा कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि हुसैन साहब बिना चप्पल के, बिना जूतों के चला करते थे, तो चाहे वे दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे हों, या किसी 5-स्टार होटल में जा रहे हों, या कहीं आउट ऑफ इंडिया में किसी महारानी से मिलने, इसके पीछे खुशबू एक भावुक किस्सा है.
0: जी
1: उनके एक बेहद करीबी दोस्त थे मशहूर कवि फेंटन. जब उनका निधन हुआ तो हुसैन साहब को इतना गहरा सदमा लगा कि उन्होंने उनके सम्मान में, दुख में, अपने जूते त्याग दिए, और उसके बाद वो ताउम्र बिना चप्पल जूतों के रहे.
0: क्या बात है, बहुत ही खास ये बात आपने बताई आशा जी आज. और अगली जो उनका एक किस्सा है वो बॉलीवुड से जुड़ा है, कि माधुरी दीक्षित की वो बहुत बड़ी फैन थी. उनकी जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन, इस फिल्म को उन्होंने थिएटर में 60 से भी ज़्यादा बार देखा था, और उन्होंने माधुरी जी को अपनी म्यूज़ प्रेरणा माना और उस पर गजगामिनी नाम की एक पूरी फिल्म बना डाली.
1: और एक बार हुआ यूं था कि मुंबई के एक मशहूर कैफ़े में हुसैन साहब ने चाय पी थी, है
0: जी
1: ना, और स्नैक्स खाए थे, और जब बिल देने की बारी आई तो उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो शुरुआती दौर उनका रहा होगा कला का. तो अब उन्होंने क्या किया कि वहीं टेबल पर रखे टिश्यू पेपर से, टिश्यू नैपकिन से तुरंत एक सुंदर सा स्केच बनाया और मैनेजर को दे दिया, और वो स्केच उस बिल की कीमत से हजारों गुना कीमती था.
0: क्या बात है,
1: तो
0: यानी कि
1: मतलब
0: पैसों की अहमियत अगर हम देखें ना आज के दौर में तो बहुत है, लेकिन उस समय की बात करें तो उस मैनेजर के तो ना भाग्य ही खुल गए कि इतनी बड़ी पेंटिंग
1: खुशबू,
0: की, पेंटर की पेंटिंग उसे मिली.
1: आज भी कई बड़े होटलों में उनके हाथ के बने वो स्केच फ्रेम करके रखे गए हैं. तो ऐसे थे मकबूल फिदा हुसैन, बेपरवाह, बेबाक और कला के लिए पूरी तरह समर्पित.
0: जी, और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत.

0: खुशबू, जब भी हम फ्री टाइम में किताबें उठा के बैठते हैं, पढ़ते हैं, पन्ने पलटते हैं, तो हमको लगता है कि गुजरा हुआ जमाना आज भी जिंदा है।
1: जी
0: इतिहास गवाह है हमारी हर कहानी का, और इन्हीं कहानियों को सहेजते हैं हमारे अभिलेख। तो मैं अपनी सखियों को बता दूं कि आज है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। तो आज हम बात करेंगे समय के उस मुसाफिर की जो सदियों का सफर तय करके आज हमारे सामने खड़ा है।
1: बिल्कुल सही कहा आशा जी। और कहते हैं ना कि इंसान मर जाता है, सभ्यताएं मर जाती है, बड़ी बड़ी साम्राज्य तक ढह जाते हैं, लेकिन जो पीछे छूट जाता है वो है अभिलेख। और आखिर ये अभिलेख क्या है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं।
0: तो खुशबू, ये सिर्फ कागज के पीले पड़े पन्ने नहीं हैं, ये किसी राजा का फरमान नहीं है, ये महज धूल से सनी पुरानी फाइलें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे पूर्वजों की धड़कनें हैं, ये हमारे इतिहास की आत्मा है। और अगर आज हमें पता है कि सम्राट अशोक ने शांति का संदेश दिया था, या अगर आज हम जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज की रणनीति क्या थी, चाणक्य की रणनीति क्या थी,
1: जी
0: तो ये सब अभिलेखों के कारण ही है।
1: और ये भी हम जानते हैं कि हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने किन किन कठिनाइयों से गुजरकर इस देश को आजाद करवाया। तो एकमात्र इनका श्रेय जाता है अभिलेखों को, जो कि इतिहास की वो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है।
0: और बात सिर्फ खुशबू बीते हुए कल का नहीं है, बीते हुए कल की बात नहीं है, इस विषय का एक और पहलू भी है, वो बहुत खूबसूरत है। जो ये अभिलेख है वो भविष्य का आईना भी है, और वो इस तरह से कि इतिहास हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि हम क्या थे, बल्कि ये हमें आईना दिखाकर हमें सचेत करता है कि भविष्य में हमें कौन सी गलतियां नहीं दोहरानी हैं।
1: जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही आशा जी। पुरानी संधियां, पुराने कानून और पुराने दस्तावेज ही आज हमारे आधुनिक समाज की नींव है। यदि हम अभिलेखों को उठाकर देखें तो हम आने वाली कई गलतियों को भी सुधार सकते हैं। और आज तो डिजिटलाइजेशन का दौर है, तो डिजिटल डेटा जो है वो भी हम रिकॉर्ड्स करके सहेज के रखते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इतिहास बनेगा।
0: और देखो ना, ये भी कहा है कि लकीरें गवाह है कि कारवां गुजरा था, पन्ने बताते हैं कि इतिहास सुनहरा था। सहेज कर रखिए इन यादों के दस्तावेजों को, इन्हीं के दन पर हमारा कल और भी गहरा था।

0: सखियों, बात करें तो आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारी सुबह स्मार्टफोन की स्क्रीन स्क्रॉल से शुरू होती है, और जब जिंदगी का हर पहलू डिजिटल हो चुका है तो हमारा इतिहास भला कैसे पीछे रहता। जी हाँ, आधुनिक दौर में डिजिटल अभिलेखागार का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है।
1: और टेक्नोलॉजी ने तो इस तस्वीर को पूरी तरह से बदल दिया है। पेपर से लेकर क्लाउड तक का यह सफर बिल्कुल अद्भुत है। यानी आज जो डिजिटल अभिलेख है, उसका मतलब है कि हमारा सैकड़ों साल पुराना इतिहास, हमारे राष्ट्रीय दस्तावेज, राजा महाराजाओं के फरमान और जो आज़ादी की लड़ाई की तस्वीरें हैं, वे अब लोहे की अलमारियों में बंद नहीं है, वे बल्कि आज इंटरनेट के क्लाउड सर्वर पर पूरी तरह से सुरक्षित और आज़ाद है।
0: और आज दिल्ली की राष्ट्रीय अभिलेखागार में रखी किसी दुर्लभ किताब को पढ़ने के लिए आपको वहाँ जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। आप चाहे कन्याकुमारी में हो, चाहे कश्मीर में हो, या फिर दुनिया के किसी भी कोने में, सिर्फ एक क्लिक आपको करना है और जो भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज़ आपकी स्क्रीन पर मुस्कुराता हुआ हाजिर हो जाएगा जिसे आपको पढ़ना है, और बस आप उसे पढ़ सकते हैं। यानी कि अब हमारा इतिहास सभी की पहुँच में है।
1: और साथ साथ में मैं अपनी श्रोता बहनों को ये बता देना चाहती हूँ कि अभिलेख हमारे राष्ट्रीय गौरव भी हैं। ये कागज़ के पीले पड़े पन्ने नहीं हैं या ताम्र पत्र और पत्थरों पर उकेरे गए शब्द नहीं हैं। ये हमारे राष्ट्र की अस्मिता है, सम्मान के सबसे बड़े सबूत हैं।
0: जी, और आशा जी सोचिए, अगर हमारे पास ये दस्तावेज नहीं होते ना, तो हम दुनिया को कैसे बताते कि 5,000 साल पहले हम

0: हमारी सिंधु घाटी सभ्यता कितनी विकसित थी। अगर अगर हमारे पास वो अभिलेख नहीं होती तो राजा चौल के नौसैनिक साम्राज्य को या छत्रपति शिवाजी महाराज के सुशासन को हम कैसे साबित करते और हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम इन सबसे कैसे रूबरू करवाते।
1: हम आने वाली पीढ़ी को ये कैसे बताते कि भारत कभी सोन चिरैया था, जगत
0: जी
1: गुरु था और बिल्कुल आप बनने भी वाला है। तो जब हम बात करें अभिलेखों की, तो स्वतंत्रता संग्राम के जीवित गवाह बात सिर्फ प्राचीन काल की नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अभिलेख जो हैं, महात्मा गांधी की लिखी वो मूल चिट्ठियाँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वो ऐतिहासिक भाषण, शहीद भगत सिंह की जेल की डायरी और भारत की आज़ादी का वो घोषणा पत्र, जब हम इन्हें देखते हैं ना खुशबू, तो खुशी के मारे हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यही दस्तावेज हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आजादी हमें खैरात में नहीं मिली, इसके पीछे लाखों लाखों बलिदानों की दास्तान है।
0: जी, और बिल्कुल आज हम ये प्रण लेते हैं कि ये अभिलेख जो है वो हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान की पहरी है जो हमें कभी झुकने नहीं देते।

0: तो जिस तरह से खुशबू हम बात कर रहे थे डिजिटलाइजेशन की, तो हर चीज़ आजकल स्मार्टफोन जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारे हाथ में होता है, एआई से अब हम जुड़ चुके हैं, तो सारे काम हमारे बहुत आसान हो चुके हैं। और आजकल तो देखो बहुत सारी चीज़ें हम नहीं सीख सकते हैं, जो नई नई होती है वो सीख सकते हैं। आज तो गाँवों की महिलाएँ भी जो है यूट्यूब देख कर बहुत कुछ सीख रही है,
1: जी
0: वो महिलाएँ जो अनपढ़ हैं, जिनको लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो सिर्फ सुनकर एआई को यूज़ करके और वो अपना नया नया बिजनेस भी खोल रही हैं।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। और सखियों, एआई यानी

0: की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी हाँ, हमारी रोज़मर्रा के कामों की बात करी, गृह उद्योगों की बात करी, बच्चों की पढ़ाई की बात करी, या हमें कुछ नई डिश बनानी हो ना आशा जी, सब जगह एआई जो है वो हमारी यूज़फुल है। अच्छा, काफ़ी बार ये होता है कि भाई एआई जो है, ये एक नाम सुन के हमें लगता है कि भाई एआई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, या हम इसे कैसे यूज़ करें, है ना, काफ़ी सारे लोगों को ये डिफिकल्टी होती है, लेकिन एआई जो है उसे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, अगर आप खुद एक बार यूज़ कर लेते हैं ना तो एआई आपको खुद ही ढूंढ लेता
1: वो
0: है।
1: हमारी खुद मदद
0: हाँ,
1: करता है।
0: अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई रेसिपी ढूंढ रहे हैं या किसी टॉपिक के बारे में हम सर्च कर रहे हैं, तो अगले ही पल में आपको उस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो ये एआई टेक्नोलॉजी है जो ऑटोमेटिकली आपको उस विषय के बारे में खोज कर और आप तक पहुंचा देता है उसके
1: यानी
0: बारे में जानकारी।
1: ऑटोमेटिकली एक ऐसा एल्गोरिदम बन जाता है, वही वही चीज़ें वापस आती रहती है जो आप सीखना चाहते हैं, जो
0: जी
1: आप देखना चाहते हैं।
0: हाँ,
1: तो यानी एआई हमारा सबसे बड़ा आज के ज़माने में मददगार बन चुका है।
0: और बच्चों का होमवर्क हो या आपको कोई पोस्टर डिज़ाइन करना हो, किसी तरीके का इंटरव्यू लेना हो, तो इन सभी चीज़ों में बहुत सारी एआई एप्स एप्लीकेशंस है जिनका यूज़ करके और हम इन सभी कामों को आसानी से कर सकते हैं।

0: सखियों, आज के इस नारी वाचिका कार्यक्रम में हमने बात करी नारी शक्ति और कला से जुड़ी कुछ खास शख्सियतों के बारे में, साथ ही आपको रूबरू करवाया विश्व अभिलेख दिवस से भी। और इन्हीं सब बातों के साथ में अब हमारे कार्यक्रम का जो समय है वो खत्म होने को चला है। चलते चलते आपको हमारी टीम से रूबरू करवा दी। आपको बता दें, HPT पर आज हमारे साथ बने थे विक्रम सिंह भाटी और PK सेन, साथ ही FM ट्रांसमीटर पर हमारा साथ दिया CL सोनी ने, कंट्रोल रूम से हमारे साथ थे फारूक अहमद शेख और कंसोल से आप तक प्यारे प्यारे गीतों को पहुंचाया उगम सिंह राजपुरोहित ने।
1: और साथ में खुशबू अपनी सखियों को मैं ये भी बता दूं कि आज के कार्यक्रम की परिकल्पना और प्रस्तुति थी राजेश लामरोड की, संयोजन था मनीष सोलंकी का, और साथ में आपके साथ ही दो प्यारी प्यारी सखियां, मैं आपकी रेडियो सखी आशा आडवाणी और मेरे साथ थी,
0: और मैं थी खुशबू।
1: तो दीजिए इजाजत, स्वीकार कीजिए,
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: आधी आबादी नारी शक्ति को समर्पित कार्यक्रम नारी वाटिका अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी और FM सन सिटी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ और FM बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के 2:15 होने को हैं। थोड़ी ही देर में हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार।

0: आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण

0: जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ₹75 का एक स्मारक सिक्का और ₹5 का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केट प्लेस जिम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जिम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जिम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12,00,000 हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गयी। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गयी। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय

0: वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
1: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। ये फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ स्थानों पर भी इसी तरह का मौसम बना रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ तथा पश्चिमी राजस्थान में लू चलने की आशंका है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए की टीम ने 278 रनों का लक्ष्य दिया है। ये मैच श्रीलंका के रंगिरी दाम्बूला अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है।

रेडियो वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। लीजिए, प्रस्तुत है एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम

0: सबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का उमंग कार्यक्रम में स्वागत है। आप सबको विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ जिसे हमें भेजा है
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल रंजीत कौर जयप्रकाश राहुल प्रियंका और मन्नत जी ने। लिखते हैं
1: मानव की इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती
2: जी।
1: एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जाग जाती है। हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए और जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए।
2: धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। और अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
1: तो पहला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन अब्बासी शाहनवाज अब्बासी सरफराज अब्बासी।
2: कुतुबपुर तहसील जिला हांसी हरियाणा से संदीप वर्मा जी।
1: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा प्रकाश अरोड़ा चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है
2: सप्रेम नमस्ते जी। गर्मी की छुट्टियों में बच्चे पेड़ पौधे लगाना पक्षियों को दाना खिलाना डायरी लिखना और दादा दादी नाना नानी के यहाँ जाना कार्य कर सकते हैं।
1: आगे आप लिखते हैं सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी उमंग कार्यक्रम में गर्मी से संबंधित विषय पर जानकारी एवं जो अन्य कार्यक्रम सुनाए जा रहे हैं बेहद पसंद आ रहे हैं। कार्यक्रम सुनकर गर्मी में भी दिल को ठंडक का एहसास हो रहा है
2: जी।
1: आपने यहीं पर विराम नहीं दिया, आपने आगे लिखा है
2: भारत के वीर सेनानियों पर आधारित कार्यक्रम की श्रृंखला वीर गाथा उमंग कार्यक्रम में सुनवाई जा रही है वो प्रशंसा योग्य है। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल जी एवं लांस नायक अल्बर्ट एक्का जी पर केंद्रित कार्यक्रम सुनकर हमारी आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम बेहद पसंद आया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए समस्त उमंग टीम का हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। और प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए।
1: तो विमलेश जी अब ये बताइए कि ये भी जानिए श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय क्या रहेगा।
2: अजीत जी इस सप्ताह हम पूरे विश्व परिवार की अनेक रोचक परंपराओं की चर्चा करेंगे
1: जी।
2: आज की चर्चा का विषय होगा जापान का चाय समारोह। इसे टी सेरेमनी भी कहा जाता है और जापानी भाषा में इसे चानो यू कहते हैं। ये दुनिया की सबसे सुंदर और अनुशासित परंपराओं में से एक है
1: जी। हाँ श्रोताओ, जापान की चाय परंपरा केवल चाय पीना नहीं लेकिन सम्मान शांति अनुशासन और व्यवहार की सुंदरता का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो आइए जानते हैं विमलेश जी से कि ये परंपरा जापान में कब शुरू हुई।
2: जी अजीत जी, हम सब जानते हैं कि चाय की शुरुआत चीन से हुई है। 9वीं शताब्दी की बात है जब कुछ बौद्ध भिक्षु चीन से चाय की पौध लेकर जापान आए और तब चाय का प्रचलन जापान में भी शुरू हुआ।
1: लेकिन विमलेश जी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जापानी चाय समारोह को इतना विशेष बनाती हैं कि हम उसकी चर्चा कर रहे हैं।
2: जी अजीत जी, जापान में चाय पीना एक विशेष अर्थ रखता है।
1: जैसे?
2: जैसे कि वहाँ चाय पीना एक औपचारिक और सामान्य बात नहीं है। इस समारोह में बहुत सी बातों का खास ध्यान रखा जाता है। आइए अपने श्रोताओं को कुछ जापानी शब्दों से भी परिचित कराते हैं जो वहाँ की चाय परंपरा को खास बनाते हैं।
1: जी सचमुच चाय पीने के संदर्भ में इन जापानी शब्दों को जानना बड़ा रोचक रहेगा।
2: अजीत जी, भिक्षुओं ने इसे आध्यात्मिकता से जोड़ दिया और इसके कुछ नियम बनाए।
1: तो क्या क्या नियम है इसके?
2: जापान का चाय समारोह चार मूल सिद्धांतों पर आधारित है। पहला सिद्धांत है वाह।
1: वाह यानी?
2: यानी हारमोनी या सामंजस्य।
1: और दूसरा शब्द क्या है?
2: दूसरा शब्द है केई।
1: जी
2: यानी रिस्पेक्ट या सम्मान।
1: और श्रोताओ, तीसरा शब्द है सेई यानी पवित्रता या प्यूरिटी। और चौथा शब्द है याकू यानी आंतरिक शांति या इंटरनल पीस।
2: श्रोताओ, इन चार सिद्धांतों पर टिकी है जापानी चाय परंपरा जिससे हम स्पष्ट अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी अर्थपूर्ण है। तो जी जी, अब करते हैं साझा कुछ और रोचक बातें जो जापानी चाय परंपरा में अनिवार्य मानी जाती हैं।
1: जी हाँ, तो श्रोताओ, चाय समारोह में अतिथि सर झुकाकर अभिवादन करते हुए चाय का कटोरा दोनों हाथों से लेते हैं। ये सम्मान दर्शाने का प्रतीक है
2: जी। एक और खास बात ये है कि इस परंपरा में अतिथि चाय का कटोरा लेकर कटोरे को मेजबान की तरफ देकर हाथ को हल्का सा

0: घुमाता है। इस कार्यक्रम में इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अतिथि कहाँ बैठेंगे, उन्हें कैसे आराम दिया जाए, ये भी ध्यान दिया जाता है कि प्याला कैसा होगा।
1: जी, और अब एक जानकारी और आपको दे दें कि ये समारोह का आयोजन पारंपरिक तौर पर कहाँ होता है।
0: ये समारोह अक्सर एक शांत टी हाउस या चाय कक्ष में होता है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। फर्श पर परंपरागत चटाई बिछी होती है, बाहर छोटा सा बागीचा भी हो सकता है।

0: और छोटा सा बागीचा भी हो सकता है। चाय घर या कक्ष को जापानी में चा शित्सु कहा जाता है। पारंपरिक रूप से चाय पार्टी में किमोना पहना जाता है। चाय कक्ष के मार्ग में रंगीन छोटे छोटे पत्थर मार्गदर्शक के रूप में लगाए जाते हैं।
1: यानी कुल मिलाकर ये चाय समारोह हो सादगी, विनम्रता और प्रकृति के सौंदर्य का मेल कहा जा सकता है।
0: जी
1: विमलेश जी, हमने ये तो बताया ही नहीं कि जापानी चाय समारोह में कौन सी चाय परोसी जाती है।
0: अरे हाँ, ये तो हम भूल ही गए थे। श्रोताओं, इस समारोह में माचा चाय दी जाती है। ये चाय की हरी पत्तियों को पीसकर पाउडर की तरह बनाई जाती है। जहाँ तक इसके स्वाद की बात है, स्वाद थोड़ा कड़वा हो सकता है।
1: कड़वा हो सकता है, तो इसीलिए सबसे पहले एक जापानी मिठाई दी जाती है जिसे वागाशी के नाम से जाना जाता है। पूरे जापान में ये मिठाई बहुत ही लोकप्रिय है। और श्रोताओं, एक खास बात आपको बताएं, प्रत्येक मिठाई बिल्कुल कलात्मक दिखाई देती है।
0: जी, तो श्रोताओं, जापान की चाय परंपरा हमें सिखाती है कि चाय पीना मात्र चाय पीना ही नहीं है, बल्कि वर्तमान क्षण को पूरी शांति और सुंदरता के साथ जीना है।
1: तो ये चाय समारोह हमें संदेश देता है कि साधारण सी चीज यानी एक कप चाय भी सम्मान, परस्पर सामंजस्य और व्यस्त जीवन में गहरी शांति का अनुभव बन सकती है।
0: जी, तो श्रोताओं, कैसी लगी हमारी जानकारी, ये जरूर बताइएगा। और अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
1: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर।
0: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in।
1: और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: जी, तो चलिए अब रुख करते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की ओर। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है संवदिया।
0: ये कार्यक्रम हमें उस समय की याद दिलाता है जब इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम नहीं थे। उन दिनों में संवाद या कोई सूचना लेकर जाने वाले को संवदिया कहा जाता था। संवदिया मात्र संदेश या पत्र वाहक ही नहीं थे, लेकिन समाज के महत्वपूर्ण सेतु थे जो एक दूसरे को जोड़ते थे। कार्यक्रम एक मार्मिक नाटक द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
2: आजकल तो घर बैठे ही कहीं से कहीं खबर भेज सकते हैं और वहाँ का कुशल संवाद मंगवा सकते हैं। फिर आज बड़ी हवेली से, बड़ी बहुरिया की ओर से हरगोबिंद संवदिया की बुलाहट क्यों हुई?
3: हाँ, लो आ गई बड़ी हवेली। निश्चय ही कोई गुप्त समाचार ले जाना है। चांद सूरज को भी ना मालूम हो, परेवा पंछी तक न जाने। हाँ। पाए लागू बड़ी बहुरिया।
4: आ गए भैया।
3: हाँ।
4: लो, ये पीढ़ी सर का लो, कुछ देर बैठ जाओ।
3: हाँ। बड़ी हवेली तो अब नाम मात्र की ही बड़ी हवेली है, जहां नौकर नौकरानियों की भीड़ लगी रहती थी। आज हवेली की बड़ी बहुरिया अपने हाथ से सूपा में अनाज लेकर भटक रही है। ओह, कहां गए वो दिन? बड़े भैया क्या गए, जैसे सब खेल खत्म हो गया।

0: तीनों भाइयों ने आपस में झगड़ा शुरू किया। रैयतों ने जमीन पर दखल कर लिया। फिर तीनों भाई गांव छोड़कर शहर में जा बसे। रह गई बड़ी बहुरिया। कहां जाती बेचारी?
1: अरे ये मुदियाइन बूढ़ी काकी काहे बड़बड़ा रही है?
2: अरे देखो बड़ी बहुरिया, उधार का सौदा खाने में बड़ा मीठा लगता है, पर दाम देते समय कड़वा। मैं तो आज दाम लेकर ही उठूंगी यहाँ से। हाँ
3: अरे मोदियाइन काकी, बाकी बकाया वसूलने का ये काबुली कायदा तो तुमने खूब सीखा है।
2: क्या कहा? काबुली कायदा? फिर काबुली का नाम लिया तो अच्छा ना होगा, कहे देती हूँ। हाँ
3: लो।
2: देखो जी, मैं फिर आऊंगी और अब की बार उधार लिए बिना हिलूंगी नहीं यहाँ से, कहे देती हूँ। बड़े आ जाते हैं उधार लेने, मांगने जाओ तो वापस नहीं करते।

0: हर गोविंद भाई,
1: हाँ?
0: तुमको एक संवाद ले जाना है आज ही। बोलो, चाहोगे ना?
1: कहाँ बड़ी बहुरिया?
0: मेरी माँ के पास।
1: माँ के पास? कहिए, क्या संवाद है?
0: माँ से कहना मैं भाई भाभियों की नौकरी कर अपना पेट पालूंगी, लेकिन यहाँ अब नहीं रह सकूंगी। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं? किस लिए, किसके लिए?
1: बड़ी बहुरिया,

0: हर गोबिंद भैया, ये 5 का नोट ही बचा है अब, पूरा राह खर्च भी नहीं जुटा सकी। आने का खर्च माँ से मांग लेना।
1: ना बड़ी बहुरिया, राह खर्च देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजाम कर लूंगा।
0: तुम कहाँ से इंतजाम करोगे? और सुनो, लगता है सुनते ही भैया तुम्हारे साथ आ जाएंगे।
1: अरे वो तो ठीक है, लेकिन मैं इंतजाम कर लूंगा बहुरिया, आप फिक्र मत करिए। ये नोट रखिए, हाले गाढ़े काम आएंगे। अच्छा, मैं आज 10 बजे की गाड़ी से ही निकल जाऊंगा।
0: अच्छा, मैं तुम्हारी राह देखती रहूंगी।
1: अच्छा, चलता हूँ।
2: संवाद यानी संदेश पहुंचाने का काम सहज नहीं होता। प्रत्येक शब्द को याद रखना, जिस सुर और स्वर में संवाद सुनाया गया है ठीक उसी ढंग से सुनाना बहुत कठिन है। बिना मजदूरी लिए ही जो गांव-गांव संवाद पहुंचाए उसको और क्या कहेंगे, निठल्ला, कामचोर, पेटू और क्या क्या नहीं। पर सच ये भी है कि गांव में कौन ऐसा है जिसके घर की माँ बहु बेटी का संवाद हरगोबिंद ने नहीं पहुंचाया है।

0: भाई साहब,
1: हाँ
0: थाना बिहपुर में ये डाक गाड़ी रुकती है या नहीं?
1: अरे भैया, थाना बिहपुर में सभी गाड़ियाँ रुकती हैं।
0: अच्छा,
1: हाँ, और मैं भी वहीं पर उतरूंगा।
0: अच्छा,
1: घबराओ मत, बता दूंगा।
0: तो कितना समय और लगेगा?
1: अरे बस थोड़ी दूर है, आने वाला है।
2: थाना बिहपुर पर गाड़ी पहुंची तो हरगोबिंद का जी भारी हो आया। बड़ी बहुरिया का संवाद सुनाते समय वो अपने कलेजे को कैसे संभालेगा? बड़ी बहुरिया के संवाद रह रह कर उसके कानों में गूंज रहे थे।
3: हरगोबिंद भाई, माँ से कहना भगवान ने आंखें फेर ली, लेकिन मेरी माँ तो है, किस लिए, किसके लिए? मैं बथुआ साग खाकर कब तक जियूं, कब तक जियूं?
0: बड़ी बहुरिया, हम क्या करें?
2: हरगोबिंद का मन कलपने लगा।

0: गांव की लक्ष्मी ही गांव छोड़कर चली जाएगी तो गांव में क्या रह जाएगा? किस मुंह से वो ऐसा संवाद सुनाएगा? ये सोचते सोचते हरगोबिंद गांव पहुंच ही गया।
1: माँ, माँ देखो, हरगोबिंद काका आए हैं।
2: पाए लागू माँ जी।
3: जीते रहो हरगोबिंद बेटा, क्या समाचार है?
2: जी, आपके आशीर्वाद से सब ठीक है।
3: मेरी बेटी का कोई संवाद?
2: संवाद? जी, संवाद तो कोई नहीं।
3: हाँ?
2: बस मैं कल सिरसिया गांव आया था तो सोचा कि चलकर आप लोगों के दर्शन कर लूं।
3: तो तुम कोई संवाद लेकर नहीं आए हो?
2: जी नहीं, कोई संवाद नहीं। ऐसे ही बड़ी बहुरिया ने कहा है कि हाँ, अगर छुट्टी हुई तो दशहरे के समय गंगा जी के मेले में आकर माँ से भेंट मुलाकात कर जाऊंगी।
3: सो तो है।
2: अरे, छुट्टी मिलेगी तो कैसे? सारी गृहस्थी बड़ी बहुरिया के ऊपर ही तो है।
3: अरे हरगोबिंद, मैं तो बबुआ से कह रही थी कि जाकर अपनी दीदी को लिवा ला, यहीं रहेगी। अरे वहाँ अब क्या रह गया है उसका? जमीन जायदाद तो सब चली गई, तीनों देवर भी शहर जाकर बस गए, कोई खोज खबर भी नहीं लेता उसकी। अब तो मेरी बेटी अकेली रह गई है।
2: नहीं नहीं नहीं नहीं माँ जी, जमीन जायदाद अभी भी कुछ कम नहीं है। टूट फूट गई है तो भी है तो आखिर बड़ी हवेली, बड़ी बहुरिया का गांव ही परिवार है। हमारे गांव की लक्ष्मी है बड़ी बहुरिया, और गांव की लक्ष्मी गांव छोड़कर कैसे जाएगी माँ जी?
3: हाँ, सो तो है। चलो अच्छा है। बबुआ, अब थोड़ा जलपान कर लो।
2: अच्छा अच्छा माँ जी।
3: हरगोबिंद, क्या सोच रहे हो? कुछ खाते क्यों नहीं बबुआ?
0: हरगोबिंद ने थाली की ओर देखा। थाली में दाल भात, तीन किस्म की भाजी, घी, पापड़, अचार, इतना सब कुछ। उधर बड़ी बहुरिया का बथुआ साग उबाल कर खाना। हरगोबिंद के मुंह में एक निवाला भी न जा सका। वो सोचने लगा, ये उसने क्या किया? वो किस लिए आया था? वो झूठ क्यों बोला? ये सोच सोच कर रात भर हरगोबिंद को नींद ही नहीं आई। उसकी आंखों के सामने बड़ी बहुरिया बैठी रही, सिसकती रही। उसने जी कड़ा किया, वो संवदिया है, उसका काम है सही सही संवाद पहुंचाना। उसने निर्णय लिया कि वो सुबह उठते ही बूढ़ी माता को बड़ी बहुरिया का सही संवाद अक्षर अक्षर सुना देगा। अगले दिन सुबह उठते ही वो माँ जी के पास जा पहुंचा।
2: माँ जी, अब आज्ञा दीजिए।
3: अरे,
2: मुझे पहली गाड़ी से वापस जाना होगा, कई दिन हो गए। अच्छा माँ जी, अब पाए लागू।
3: जीते रहो बेटा,
2: अब चलता हूँ।
4: क्यों भाई, रहा खर्च तो है?
2: अरे भैया जी, आपकी दया से किसी बात की कमी नहीं है।
4: अच्छा
2: अच्छा, राम राम।
4: राम राम
2: राम राम।

हरगोबिंद के पास तो बस कटिहार तक जाने के पैसे थे। गाड़ी में बैठते ही उसकी हालत अजीब हो गई। वो कहाँ आया था?

0: क्या करके जा रहा है? बड़ी बहुरिया को क्या जवाब देगा?
1: कटिहार आ गया। उतर लो, जाना है जलालगढ़। टिकट कटिहार तक का ही है। जलालगढ़ है 20 कोस दूर। अरे बड़ी बहुरिया राह देख रही होगी, पैदल ही चलता हूं। बीस कोस की मंजिल भी भला कोई दूर की मंजिल है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान।

0: भूख से बेहाल, थकान से चूर, लड़खड़ाता हुआ हरगोबिंद बहुरिया के दरवाजे पर गिर पड़ा।
1: हरगोबिंद भाई आ गए? हाय, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ?
2: बड़ी बहुरिया।
1: हरगोबिंद भाई, लो एक घूंट दूध ले लो, मुंह खोलो। हाँ लो, आप पी लो, पी लो, शाबाश शाबाश। हाँ शाबाश, अब जी कैसा है?
2: बड़ी बहुरिया, मुझे माफ कर दो।
1: कहे?
2: मुझे माफ कर दो,
1: पर
2: मैं तुम्हारा संवाद न कह सका। तुम गांव छोड़कर मत जाओ।
1: हरगोबिंद भाई,
2: मैं तुमको कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, कोई कष्ट नहीं। मैं तुम्हारा बेटा। बड़ी बहुरिया, तुम सारे गांव की माँ हो, तुम्हारा सब काम करूंगा मैं।
1: हरगोबिंद भाई, तुम
2: मैं अब निठल्ला बैठा नहीं रहूंगा। बोलो बोलो बड़ी माँ, तुम गांव छोड़कर चली तो नहीं जाओगी? नहीं जाओगी ना? नहीं जाओगी ना?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी।
2: बड़ी माँ,
3: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम संवदिया। आशा है कि यह कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिए।
4: Join together in the Janajatiya Garima Utsav, celebration of pride, aspiration and the journey towards Viksit Bharat. Inspired by the vision of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, tribal communities move forward with hope, dignity and determination. Celebrating Janajatiya Garima Utsav 2026, 10th May to 9th June, showcasing progress across every generation towards a stronger, inclusive and empowered Viksit Bharat.
5: और अब सुनते हैं एक और खूबसूरत कार्यक्रम जो हमें लेकर जाएगा मरुभूमि यानी
3: मरुस्थल में या रेगिस्तान में
5: जी,
3: और बताएगा विस्तार से रेगिस्तान के बारे में। तो आइए जानते हैं रेगिस्तान या मरुभूमि के बारे में और सुनते हैं कार्यक्रम द डेजर्ट।
6: दोज ऑफ अस हु लिव इन रीजन्स कवर्ड विद फॉरेस्ट्स एंड सराउंडेड बाय हिल्स may find it difficult to imagine what a desert is really like. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rain falls and, therefore, no vegetation grows.

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब आरंभ होती है। आइए अब सुनते हैं युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो, हाय, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जगह पे ट्यून इन किया है. आप सुन रहे हैं कार्यक्रम युववाणी, जहाँ मैं हूँ आपके साथ, आपकी रेडियो हमसफर डॉली. और आज यहाँ मेरे साथ हैं
1: जी हाँ बिल्कुल, इस आवाज़ का नाम राहुल। और आज बहुत सारी बातें, बहुत सारे गाने और स्पेशल प्रोग्राम है। मंगलवार का दिन है, दूसरा मंगलवार है, तो आज आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। यूथ अंताक्षरी जो है वो कार्यक्रम आयोजित होने वाला है कुछ ही देर में, आप हमसे जुड़ सकते हैं और बहुत सारी बातें होंगी। कुछ नए सवाल, कुछ अतरंगी, कुछ मज़ेदार से क्वेश्चंस होंगे और कुछ होंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। आपका नॉलेज कितना क्या कुछ है, अगर आप कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए और भी लाभदायक आज का ये जो क्विज़ का प्रोग्राम बिल्कुल बेशक हो सकता है। तो कहीं नहीं जाना, आपको बने रहना है हमारे साथ ऑनली ऑन 102.1 FM पर। इस आवाज़ का नाम राहुल है और आज बहुत सारी बातें, बहुत सारी मस्ती और पहला गाना आपकी नज़रिए पेश।

0: वेलकम वेलकम वेलकम, एक बार फिर से वेलकम आपका प्रोग्राम हिमानी को इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं आप इन दो आवाज के साथ। इस आवाज का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली।
0: देखिए जी अंताक्षी, क्विज का प्रोग्राम जो कि अब शुरू हो चुका है, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर जुड़ सकते हैं जो कि है 02915253300, 02915253300 पर।

0: वेलकम बैक। जो आपका यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल आज की शाम चल रहा है और प्रोग्राम युवाणी, अगर आप हमसे आज की शाम जुड़ना चाहते हैं तो कहाँ जुड़ सकते हैं डॉली, बता दो जरा।
1: हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, और कॉल करने के लिए नंबर है ये वाले 02915253300 या फिर 02915254300।
0: फिलहाल अगर आप गाड़ी में ट्रेवल कर रहे हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा, और जब कभी भी बाइक पर सवार हो तो हेलमेट का

0: अरे यार यार, और हमारे साथ जो है वो आज की शाम के पहले कॉलर हमारे पास आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं फोन पर। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: नमस्कार, गुड इवनिंग
0: वेरी गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका?
1: राहुल भैया को, डोली मैम को और कंसोल पर विराजमान मुस्कान जी मैम को, दिनेश होडा का प्यार भर नमस्कार।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जी, आज की शाम आपका ये पहला सवाल, किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता था?
1: ऑप्शन दीजिए सर।
0: भारत, पाकिस्तान, जापान या फिर बांग्लादेश?
1: 2026 की बात कर रहे हो?
0: जी, 2026 मेंस अंडर 18 एशिया कप।
1: ये ऑप्शन राइट है, भारत।
0: सही सवाल है, पक्का?
1: नहीं, वापस एक बार रिपीट कर दीजिए आंसर।
0: किस हॉकी टीम ने मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का खिताब जीता?
1: ऑप्शन भारत, पाकिस्तान, जापान, बांग्लादेश। आपने क्या ये चार ऑप्शन
0: जी
1: दिए?
0: जी
1: मेरे हिसाब से सर जापान हो सकता है।
0: जी आपका ये जो जवाब है वो गलत है, इसका सही जवाब है भारत। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भी अगर कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915253300, 02915253300 पर।

0: वेलकम बैक है जी आपका इस मज़ेदार से खाने की बीच। हमारे साथ अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं। चलिए जी नमस्कार, क्या नाम है आपका,
1: रणवीर
0: कहाँ से बात कर रहे हैं रणवीर? आप
1: राजस्थान
0: जोधपुर राजस्थान, क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए थोड़ा सा।
1: करते
0: कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं?
1: हैं
0: अच्छा 11वीं में। कौन सी स्ट्रीम से, क्या सब्जेक्ट लिया आपने 10th के बाद?
1: क्लास
0: साइंस बायोलॉजी। अरे वाह क्या बात है, क्या मतलब क्या टारगेट से, क्या बनना चाहते हैं आगे, क्या गोल्स है, क्या प्लान बना रखे हैं अभी से?
1: डॉक्टर
0: डॉक्टर बनना है? अरे वाह, फैमिली में कोई डॉक्टर है या इंस्पिरेशन कहाँ से मिली है ये?
1: बहुत सारे
0: बहुत सारे डॉक्टर हैं? अच्छा वाह,
1: चाचा
0: कौन है डॉक्टर आपकी फैमिली में?
1: बड़े पापा
0: अच्छा, चलिए जी बहुत बढ़िया। यूथ यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये रहा।
2: विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? आपके ऑप्शंस है रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन, फीमर, पसली यानी कि रिब, भुजा की हड्डी यानी कि आम बोन।
1: फीमर
2: क्या आप श्योर हैं?
1: यस
2: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: बात रणवीर, आज की शाम आपके लिए अगला सवाल ये रहा। ओके, आपका सवाल है कि प्रतिवर्ष यानी हर साल दुनिया भर में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। आपके पास ऑप्शंस हैं 5 जून, 6 जून, 7 जून या फिर 8 जून को मनाया जाता है।
1: 5 जून
0: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?
1: यस
0: पक्का?
1: पक्का
0: चलिए जी बहुत बहुत क्या शानदार, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
2: तो चलिए दो जवाब जो हैं आपके सही हो चुके हैं। तो आपके लिए तीसरा सवाल और पेश है। विच इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। पृथ्वी के सबसे निकट तारा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं सीरियस, पोल स्टार, सूर्य या अल्फा स्टार।
1: अल्फा स्टार
2: क्या आप श्योर हैं?
1: यस
2: आपका ये वाला जवाब गलत है। इसका सही जवाब है सन यानी कि सूर्य, जो कि हमारे पृथ्वी के सबसे निकट तारा माना जाता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूथ क्विज प्रोग्राम में आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ते रहिएगा यूथ के। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे आज की शाम। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं नंबर्स पर जो कि हैं
2: 02 91 25 53 300 या फिर 02 91 25 54 300।

0: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: वेलकम बैक जी आपका एक बार फिर से यूथ क्विज प्रोग्राम। फिलहाल आज की शाम चल रहा है ओनली 102.1 एफएम पर और रईस आवाज का नाम आज आपके साथ है राहुल और मेरे साथ
4: आपकी रेडियो हम सफर डॉली
3: और हमारे साथ जो है अगले कॉलर भी फिलहाल जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
5: जी सर रघुवीर।
3: रघुवीर कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
5: बाड़मेर बायतू।
3: बाड़मेर बायतू से, क्या करते हैं अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
5: पहले तो पढ़ाई कर रहे थे लेकिन अभी फिलहाल छुट्टियां हैं तो खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं।
3: अच्छा, पढ़ाई किस चीज की पढ़ाई कर रहे थे आप?
5: जी सर बारहवीं पास किया अभी।
3: अच्छा अभी बारहवीं पास किया है, क्या आगे के क्या गोल्स हैं, क्या फाइनल कर मतलब क्या सोचा है, क्या करना है आगे जाके?
5: जी सर आगे तो मेडिकल फील्ड में ही थे तो फार्मेसी कर रहे हैं
3: हम। अच्छा फार्मेसी कर रहे हैं आप। अच्छा अच्छा बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल यह है, हाल ही में कौन महिला जो है वो पटना उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बनी है? जस्टिस सुनिधि प्रताप सिन्हा, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस अवनी सिंह गोस्वामी, लास्ट ऑप्शन जस्टिस विशाखा सिंह चौधरी।
5: सिंह चौधरी।
3: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?
5: जी सर।
3: ये जो जवाब है वो गलत है, इसका सही जवाब जो है वो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय है जो कि हाल ही में महिला है जो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी कार्यक्रम हमारे साथ जुड़ते रहिएगा। फिलहाल के लिए आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, और अगर हमारे साथ और भी कॉलर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं
4: 02915353000 02915354300 पर।

0: बस तुमसे मिलने की देर थी और हमारे अगले कॉलर से हमें मिलने की देर थी, वो भी मुकम्मल हो चुकी है। हमारे अगले कॉलर फिलहाल हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओके जी, हमारे साथ उनका कनेक्शन फिलहाल नहीं बन पा रहा है। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं कहाँ पे?
1: इन नंबर्स पर,
0: जो
1: और
0: कि है
1: नंबर्स है 0291-2553-300, 0291-2554-300
0: जी
1: पर।
0: हाँ बिल्कुल, इन नंबर्स पर हमारे साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल आज की शाम चल रहा है, जो कि हर महीने के दूसरे और चौथे मंगलवार को आप एंजॉय करते हैं, सुनते हैं, और आपके लिए बेहद ही काम की जानकारियाँ, काम के जो क्वेश्चंस, अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें तो स्पेशली आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा अगर आप इस प्रोग्राम को सुनते, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कनेक्ट हो जाइए, और फिलहाल के लिए इन्जॉय कीजिए मज़ेदार सा गाना।

0: वेलकम बैक टू यू वाणी दोस्तों. क्या प्यारा सा सॉन्ग था ना राहुल.
1: बहुत
0: इतने
1: प्यारा, बहुत
0: इतना
1: प्यारा।
0: इतने प्यारे इसके लिरिक्स हैं कि दिल को छू जाते हैं. और वैसे ही हमारे दिल को छू जाने वाले हमारे श्रोता, हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार.
1: जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
2: कैलाश सारण,
1: कैलाश चारण, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
2: जालौर से।
1: जालौर से। क्या करते हैं, अपने बारे में कुछ बताइए जरा।
2: मैं अभी फर्स्ट ईयर कर रहा हूँ,
1: अच्छा,
2: वेटरनरी डिप्लोमा चल रहा है मेरा।
1: क्या बात है, वेटरनरी डिप्लोमा चल रहा है, फर्स्ट ईयर अभी आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर में। तो पहले से डिसाइडेड था इसी फील्ड में जाना है या फिर बाद में आगे डिसाइड हुआ?
2: नहीं, पहले कोई डिसाइड नहीं था, पहले मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया था, फिर मेरे को लगा कि ये सही रहेगा अभी।
1: अच्छा। तो इस भर्ती में मतलब कहाँ, किस पोस्ट पे आदमी जाता है, कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता है, उसके बारे में भी कुछ बताइए।
2: हाँ, इसमें LSA में लग सकते हैं अपन।
1: अच्छा, लाइव स्टॉक असिस्टेंट।
2: हाँ,
1: अरे वाह, तो यही बन सकते हैं इस डिप्लोमा के बाद भी, फिर और भी कोई भर्तियाँ आती है?
2: और भी आती है सर, जैसे अपन प्राइवेट बिजनेस कर सकते हैं।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये है, किस भारतीय मूल के छात्र ने अमेरिका में आयोजित होने वाली प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026, ये एक प्रतियोगिता का नाम है, स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी 2026 में ये प्रतियोगिता उन्होंने जीती है, कौन है वो? भारत मूल के हैं छात्र, आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन श्रेय पारिक, अजय निगम, शंकर चतुर्वेदी या फिर सुनील जाटव।
2: चार नंबर ऑप्शन।
1: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं? सुनील जाटव आप बता रहे हैं?
2: यस,
1: ओके, ये आपका जो जवाब है वो गलत है। इस सवाल का सही जवाब है श्रेय पारिख, जो कि इन्होंने भारतीय मूल के हैं और अमेरिका में आयोजित होने वाली इस प्रतिस्पर्धा में इन्होंने ये प्रतियोगिता जीती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और भी कार्यक्रम हमारे साथ बने रहिएगा, जुड़ते रहिएगा। फिलहाल अगर और भी कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहता है आज की शाम यूथ क्विज प्रोग्राम में, तो जुड़ सकता है।
0: वो जुड़ सकते हैं हमारे नंबर्स पर, और नंबर है 02915253300, 02915254300 पर.

0: क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन सा म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया आज की शाम प्रोग्राम युवाणी में। यूथ क्विज प्रोग्राम चल रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं यूथ क्विज प्रोग्राम कहाँ पर, ओनली ऑन 102.1 FM पर। इस आवाज़ का नाम राहुल और आज मेरे साथ हैं
1: डॉली। तो राहुल, और भी कॉलर्स हमारे साथ लगातार जुड़ते जा रहे हैं, लगता है एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार जी,
1: नमस्कार, आपका नाम?
2: मैं दीक सिंह राठौड़ बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका युववाणी के यूथ क्विज प्रोग्राम में। अभी फिलहाल हमारा क्विज प्रोग्राम चल रहा है और
0: आज की शाम आपके लिए पहला सवाल ये रहा, आपको बताना है प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व साइकिल दिवस यानी वर्ल्ड बाईसाइकिल डे कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 31 मई, 1 जून, 2 जून या फिर 3 जून को।
2: 3 जून को
0: क्या आप अपने जवाब के लिए श्योर हैं?
2: जी।
0: चलिए जी, आपका जो जवाब है बिल्कुल सही है।

वहीं आपके लिए दूसरा सवाल ये रहा। हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी श्याम लाल मीणा का 61 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? आपके ऑप्शंस है जिम्नास्टिक्स, तीरंदाजी, बास्केटबॉल या क्रिकेट।

0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, यूथ क्विज प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है। और भी कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं 02915353 या फिर 02915354300 पर। और हमारे साथ अगले कॉलर, जी हाँ बिल्कुल, लगातार अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं, क्या बात है। चलिए जी, इंट्रोडक्शन करने के सिलसिले में सबसे पहले आपका नाम?
1: नाम अरविंद चौधरी,
0: अरविंद चौधरी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: हम सालोड़ी गांव जोधपुर से,
0: क्या बात है, क्या करते हैं, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं आप?
1: 9th में।
0: 9th में पढ़ रहे हो, अरे वाह, यूथ क्विज प्रोग्राम को सुन रहे हो, आपने पार्टिसिपेट किया, क्या बात है। मतलब क्या सोचा है, क्या प्लान है, क्या बनना है आगे जाकर?
1: आर्ट्स लेनी और पुलिस बनना है।
0: आर्ट्स लेनी और पुलिस बनना है, अभी से ही मतलब क्लियर है पूरा।
1: हाँ
0: तो पुलिस में क्या मतलब, आईपीएस बनना है या सब इंस्पेक्टर बनना है, क्या बनना है?
1: थाना अधिकारी।
0: थाना अधिकारी, सब इंस्पेक्टर बनना है।
1: हाँ
0: अरे वाह,
1: बस।
0: आपकी फैमिली में कोई और हैं जो पुलिस में सर्विस करते हैं? किससे इंस्पिरेशन मिली आपको?
1: हाँ मेरे पापा है, मेरे दो चाचा हैं।
0: अच्छा, वो दोनों पुलिस में ही सर्विस करते हैं,
1: हाँ तीनों।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और आप भी ये चाहते हैं कि मैं भी इसी सेवा में जाऊँ, है ना?
1: हाँ
0: बिल्कुल, आपका ये सोचना है अभी से, जो दृढ़ संकल्प है, ज़रूर कामयाब होगा। यूथ क्विज प्रोग्राम में आप आज बहुत बहुत स्वागत है। आपको बताना है आज की शाम आपके लिए ये रहा पहला सवाल। आपको बताना है प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 1 जून, 2 जून, 4 जून या फिर 5 जून को।
1: 5 जून को।
0: पक्का श्योर है अपने जवाब के लिए?
1: हाँ
0: क्या बात है, आपका जवाब बिल्कुल सही है।
2: बिल्कुल, क्या बात है। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए लेके आए हैं ये दूसरा सवाल। हाल ही में कौन पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य निर्वाचन अधिकारी बनी है? आपके ऑप्शंस है सुमन राजपूत, सुनीता चावला, प्रियांशी सिन्हा, नीलम मीणा।
1: नीलम मीणा।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: हाँ
2: बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने।
0: ओके, क्रिकेट देखते हैं आप?
1: क्रिकेट कभी कभी देखता हूँ।
0: कभी कभी देखते हो,
1: हाँ
0: अच्छा। चलिए जी, आपको बताना है कि इस बार जो आईपीएल हुआ है 2026 का, क्रिकेट टीम
1: हाँ
0: ने, कौन सी ऐसी टीम है जिसने जो 2026 का ये आईपीएल का खिताब जीता है? आपके पास ऑप्शन है गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु या फिर सनराइजर्स हैदराबाद।
1: सनराइजर्स हैदराबाद। पूरा
0: सनराइजर्स हैदराबाद ने जीता है?
1: श्योर नहीं है।
0: अच्छा, आप, मेरे को लगता है क्रिकेट कम देखते हैं, पढ़ाई पे पूरा जोर लगाते हैं ना,
1: क्रिकेट इतना नहीं देखते, फोन देते नहीं है।
0: फोन देते नहीं? अरे वाह, क्या बात है, मतलब घर वाले भी पूरा ध्यान रखने हैं कि आपको पुलिस बना के छोड़ेंगे वो अब तो। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जो आपको बता देता हूँ, इस सवाल का सही जवाब आईपीएल 2026 का जो खिताब है ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता, और 2025 वाला भी इन्होंने ही जीता था। ठीक है, डन। चलिए जी, बढ़ेंगे आगे। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं यूथ क्विज प्रोग्राम में तो जुड़ सकते हैं 02915353300 पर और 02915354300 पर। फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे मजेदार से गाने, और अगला गाना आपकी नज़रिए पेश है साहब।

0: में। और हमारे जो श्रोताओं का कॉलर और जो यंग बच्चे जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, उनका जुनून भी मतलब मुझे कमाल का नजर आ रहा है। फिलहाल अगले कॉलर में हमारे साथ आज की शाम फिर जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? पार्वती। पार्वती, कहाँ से बात कर रही हैं पार्वती आप?
1: किचन गांव से।
0: खीचन गांव से। अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं आप?
1: एक
0: 8th में। अच्छा, 8th क्लास में भी पढ़ रही हैं। आगे जाकर क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या बनना है, अभी से कुछ सोचा है या फिर बाद में सोचना है?
1: साइंस लेनी है।
0: अच्छा, साइंस लेनी है, तो क्या बनना है साइंस लेकर?
1: डॉक्टर।
0: डॉक्टर बनोगे? अरे वाह, आप डॉक्टर बन जाओगे बिल्कुल, अगर लगातार पढ़ाई करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे। यूथ क्विज प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की शाम आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
2: किस ग्रह पर सबसे अधिक चंद्रमा है? विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स? आपके ऑप्शंस है बृहस्पति, जुपिटर, मंगल यानी मार्स, शनि यानी सैटर्न, वरुण यानी कि नेपच्यून।
1: डी ऑप्शन।
2: क्या आप श्योर हैं?
1: हाँ,
2: डी ऑप्शन यानी कि नेपच्यून आपने चूज किया है। आपका ये जवाब गलत है, सही जवाब है सैटर्न।
0: चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े हुए यूथ क्विज प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, और भी आगे पार्टिसिपेट करते रहिएगा। अगर और भी कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं।
2: इन नंबर्स पर वो नंबर्स है 02915253300, 02915253300।
0: चलिए जी, हमारे साथ अगले कॉलर भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे इस नंबर पर, और फिलहाल के लिए बढ़ेंगे आगे, सुनेंगे म्यूजिकल कारवां में ही ये अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: वेलकम बैक जी। आपको एक बार फिर से यूथ क्विज प्रोग्राम फिलहाल चल रहा है और हमारे साथ अगले कॉलर भी अब जुड़ चुके हैं जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: हेलो
0: हाँ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका?
1: सुरेश,
0: सुरेश, आज की
1: हेलो
0: शाम
1: सुरेश।
0: आपके लिए ये रहा आपका पहला सवाल।
1: आइए।
0: किस आपको बताना है, किसे BSF में हाल ही में आपको बताना है? आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं? हेलो, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए जी, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं इन नंबर्स पर जो कि हैं
1: 02-91-25-53-300, 02-91-25-54-300 पर।
0: पढ़ेंगे आगे, सुनेंगे म्यूजिकल कारवां में अगला म्यूजिकल ट्रैक।

0: क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन से म्यूजिकल ट्रैक आपने एंजॉय किया। टू स्टेट्स मूवी से मस्त मगन, और हम भी मस्त मगन हो रहे हैं। आप भी इन गानों के साथ ऑब्वियस है मस्त मगन हो ही रहे होंगे। फिलहाल प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, आप सुन रहे हैं ऑनली ऑन 102.1 FM पर। और इस वक्त आज की शाम यूथ क्विज प्रोग्राम है, जिसे आप दूसरे और चौथे मंगलवार इंजॉय करते हैं। देखो भैया, युवाओं का प्रोग्राम चल रहा है, यूथ प्रोग्राम चल रहा है, और आज के दिन कुछ नॉलेजेबल बात ना हो तो मतलब कैसे कैसे काम चलेगा। आज काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, क्योंकि अब बताने वाले हैं मैं आपको आज का वर्ड ऑफ द डे। डॉली क्या है?
1: आज का हमारा वर्ड ऑफ द डे है सेवा, यानी कि SAVOR, मतलब टू एन्जॉय, अप्रिशिएट योर एक्सपीरियंस समथिंग स्लोली एंड कम्प्लीटली, यानी कि किसी भी पल, किसी भी अनुभव को, किसी भी भावना को पूरी तरह हम आनंद लेके उसे महसूस करें। राहुल, आजकल की जो ये हमारी फास्ट लाइफ है, उसके अंदर हर चीज़ हमें जल्दी जल्दी करनी है, कि खाना खाते तो जल्दी जल्दी खाओ, गाने सुन लिए तो नेक्स्ट ट्रैक, फटाफट नेक्स्ट ट्रैक लगाओ, सफ़र करते हैं तो हमें जल्दी जल्दी करना है, तो हर चीज़ अपना एक टाइम मांगती है जो कि हम उसे देते नहीं हैं, और इसी वजह से हम उसे अच्छे से इन्जॉय भी नहीं कर पाते हैं। तो सेवा हमें ये सिखाता है कि रुक कर हमें पूरी तरह महसूस करना चाहिए हर एक पल को।
0: इसे एग्जाम्पल के जरिए भी बता दो एक लाइन में कि भाई इसका ये मतलब होता है।
1: जैसे कि डोंट रश योर मील, सेवर एवरी बाइट, यानी कि हर बाइट को हमें अच्छी तरह आनंद लेना है
0: आनंद लेना
1: बेसिकली।
0: चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। जैसे कि आज की शाम अब आपके सामने अब चाय आने वाली होगी, तो उसका आपको लुत्फ उठाना है, जल्दबाजी में नहीं पीना, आराम से चुस्कियाँ लेनी चाय की और मज़े से पीना उसको, उसको उसको आनंद लेना है, पीना है चाय को, गटकना नहीं है, पीना है आराम से। और फिलहाल के
1: क्या
0: लिए
1: बात
0: बढ़ेंगे
1: है,
0: आगे, मज़ेदार से गानों का कारवा तो चल ही रहा है। अगला गाना आपकी नज़र पेश है साहब।

0: तुम तक और आज का हमारा और आपका जो साथ था वो यहीं तक था। प्रोग्राम युवाणी में यूथ क्विज प्रोग्राम को आज की शाम एंजॉय कर रहे थे मैं राहुल और मेरे साथ
1: आपकी रेडियो हम सफर डॉली। और आज हमने बहुत सारी बातें की और श्रोताओं से बहुत सारी प्यारे प्यारे से सवाल पूछे, उन्होंने जवाब भी काफी बढ़िया दिए।
0: आज के कार्यक्रम का संयोजन रहा मनीष कुमार सोलंकी, प्रस्तुति रही राजेश लामरोड की, कंसोल पे हमारे साथ मुस्कान। हम मिलेंगे आपको फिर एक नई शाम, नई बात और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार

0: प्रकार से अवैध और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमेरिका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media, New Delhi External Affairs spokesperson Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
2: Over 30 people have been killed and around 200 others have been injured in clashes between protesters and security forces in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Union Home Minister Amit Shah today inaugurated the Land Port Management System, Vinimay, in New Delhi to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said, the initiative marks a significant step towards building a modern and technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Viksit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security.
0: लैंड पोर्ट का तेजी से विकास होने के बाद
4: आफ्टर द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द लैंड पोर्ट नॉट ओनली हैज ट्रेड इंक्रीज्ड बट सिक्योरिटी हैज आल्सो बीन इंश्योर्ड। इट हैज हेल्प ट्रांसफॉर्म इलीगल ट्रेड इनटू लेजिटिमेट ट्रेड। इन द विजन ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज वेयर माइग्रेशन वॉज द बिगेस्ट प्रॉब्लम द लैंड पोर्ट हैव मेड अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन एड्रेसिंग दिस एज वेल।
0: लैंड पोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

आज रात 10 बजे आप सुन सकते हैं श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम मन चाहे गीत। शाम 7 बजे आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चौपाल। शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

आइए अब जान लेते हैं कल के मुख्य मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। कल रात 9:30 पर आप सुन सकते हैं चर्चा का विषय। इसे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया जाएगा।

कल रात 10 बजे आप सुन सकते हैं शास्त्रीय संगीत। कल रात 9:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम साहित्य सुधा।

कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सुबह 7 बजे। सुबह 8:30 पर सुनिएगा मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार।

दोपहर 1:05 पर सुनिएगा किसान भाइयों का कार्यक्रम कृषि जगत। दोपहर 1:15 पर आप सुन सकते हैं महिलाओं का कार्यक्रम गणगौर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं दोपहर 2:30 पर। शाम 5:00 युवा साथी सुन सकते हैं अपना कार्यक्रम युववाणी। शाम 7:00 सुनिएगा चौपाल और 7:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम सीमा रेल की गूंज।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए देश कान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। शाम के 6:20 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका सुषमा कुमारी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दूरभाषद्वारा कुवैत आमीर इत्यनेन सह पश्चिमेशियायाः विकसितां सुरक्षास्थितिं चर्चितवान्। भारतं संयुक्त राष्ट्र संघे पाकिस्तानं निन्दयन् तं द्वेष उद्योगीति अवोचत्। खाद्य सुरक्षया सह कृषकाणां सशक्तीकरण विषये केन्द्रितस्य पञ्चदिवसीयस्य ब्रिक्स कृषि मन्त्रिणां सम्मेलनम् इन्दौर नगरे आरभ्यते। सामरिक मार्ग परियोजनायाः जोजिला गह्वर मार्गः अन्तिमां सफलतां प्राप्नोत्, येन कश्मीर उपत्यकया सह लद्दाखस्य च मध्ये सर्व ऋतु सम्पर्कः वास्तविकतया समीपे आगतः। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीरे प्रदर्शनकारिणां सुरक्षासेनाभिः सह सञ्जातेषु संघर्षेषु 30 अधिकाः जनाः मृताः, प्रायः 200 जनाश्च व्रणिताः अभवन्। अपि च कर्णाटकस्य केरलस्य माहि क्षेत्रस्य च उपरि अत्यधिकवृष्टेः सम्भावनामभिलक्ष्य भारतीय ऋतुविज्ञान विभागेन रक्तवर्णीया सञ्चेतना निर्दिष्टा। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्याप्राह्णे कुवैत देशस्य प्रमुखेण शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह इत्यनेन सार्धं दूरभाषेण संवादम् अकरोत्। उभौ नेतारौ पश्चिमेशियायां परिवर्तित सुरक्षा परिस्थितिमालक्ष्य परस्परं विचार विनिमयं कृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा क्षेत्रे विवर्धित तनावपूर्ण विषये गम्भीरा चिन्ता प्रकटिता तथा च कुवैतस्य सार्वभौमिक प्रादेशिक अखण्डतां विरुध्य विहित आक्रमणान् प्रति भारतस्य प्रतिज्ञा पुनः प्रतिपादिता। असौ शान्तेः स्थैर्यस्य च पुनः स्थापनार्थं तनावं न्यूनीकर्तुं संवादं पारस्परिक सहभागितां च दृढयितुं पुनरापि आवाहनम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य अवदत् यत् विगत 12 देशस्य यूनां महिलानां कृषकाणां च सशक्तीकरणे सर्वकारः किमपि न अत्यजतीति। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्रीमोदी अवदत् यत् 40

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबी जीराम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। और अब समाचार विस्तार से। मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण वीबी जीराम जी के सुचारू परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार ने 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए ये प्रस्ताव रखा है। ये अधिनियम 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में इसकी घोषणा की। इसके बाद प्रेस वार्ता पर उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के बजट आवंटन में कोई कटौती नहीं की गई है, बल्कि पिछले साल की तुलना में बजट में 40% की बढ़ोतरी की गई है। अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक तैयारियां की जा रही है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे, इसका कम हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60%

0: परसेंट ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। पत्रकारों से बातचीत में श्री प्रधान ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और गोपनीयता बनाए रखने के सभी जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधन लगाए गए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सीबीआई नीट परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। जयपुर के खोनागोरियान क्षेत्र में आज एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 3 श्रमिकों की मौत हो गई, वहीं 5 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी। हादसे के समय वहां 8 लोग मौजूद थे, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आग लगने के बाद वहां रखे गैस सिलेंडर में भी विस्फोट हो गया, जिससे स्थिति अधिक भयावह हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही सिविल डिफेंस टीम मौके पर पहुंची। दमकल की मदद से आग पर काबू पाया गया। थानाधिकारी ओम प्रकाश ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया, और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे, जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने एसएमएस और जेएनयू अस्पताल भिजवाया। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने की कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
1: राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए भरे गए सभी 9 नामांकन पत्र सही पाए गए। द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए 3 प्रत्याशियों ने ये नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए थे, जिनकी विधानसभा में जांच की गई। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि कांग्रेस के उम्मीदवार नीरज डांगी और भाजपा की अलका सिंह तथा सतीश पूनिया के पर्चों की जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन की मौजूदगी में की गई। जांच के साथ ही इनकी वीडियोग्राफी भी करवाई गई। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि प्राचीन काल से ही भारत शिक्षा का केंद्र रहा है। यहां 19 विश्वविद्यालय थे, जहां दुनिया भर से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने आते थे। राज्यपाल आज लोकभवन में कर्नाटक के आईआईटी धारवाड़ के विद्यार्थियों से संवाद कर रहे थे। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत विद्यार्थियों का अभिनंदन करते हुए राज्यपाल ने राजस्थान के महापुरुषों और ऐतिहासिक स्मारकों के बारे में बताया। नई शिक्षा नीति का जिक्र करते हुए श्री बागड़े ने कहा कि इसमें युवाओं को सभी क्षेत्र में अग्रणी बनाने पर जोर दिया गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIR_News_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में चिकित्सा विभाग ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही जोधपुर मेडिकल कॉलेज से विशेषज्ञों की टीम जांच के लिए बीकानेर भेजी गई है। इस बीच चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींसर ने आज जयपुर में बैठक कर अधिकारियों से मामले की जानकारी ली। चिकित्सा मंत्री ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। मीडिया से बातचीत में श्री खींसर ने कहा कि बीकानेर का ये मामला कोटा प्रसूता प्रकरण जैसा नहीं है।
4: पहली चीज, ये चारों केसेस अलग अलग टाइम के हैं, एक टाइम नहीं है, अलग अलग कॉजेज हैं,

0: पेशेंट सब आए थे वो उनकी कंडीशन काफी गंभीर थी। गांव के अंदर क्या होता है, टाइमली नहीं लाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है, गर्मी पड़ रही है, डिहाइड्रेशन है, तो इसके अंदर क्या है कि एक पेशेंट थोड़ी सी गंभीर है, बाकी जो आपके तीन पेशेंट्स हैं वो अभी स्थिर है, उनका यूरिन आउटपुट भी सही है। ये कोटा वाला एपिसोड से कोई इसका लेना देना नहीं है, ना वो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कोटा के अंदर थी।
1: गौरतलब

0: गौरतलब है कि बीकानेर में सिजेरियन डिलीवरी के बाद 6 प्रसूताओं की किडनी प्रभावित होने की सूचना है। वहीं गंभीर हालत वाली एक महिला को वेंटिलेटर पर रखा गया है। अस्पताल प्रशासन ने कारणों की जांच शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ में आज वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण वितरित किए गए। राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने 800 से अधिक बुजुर्गों को ये उपकरण दिए। उन्होंने बताया कि इसके लिए पिछले साल नवंबर महीने में विशेष शिविर लगाकर लाभार्थियों को चिन्हित किया गया था। इसके बाद उनकी जरूरत के आधार पर 85 लाख रूपये मूल्य के ये उपकरण तैयार कराए गए। देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में संयुक्त सचिव साकेत कुमार ने आज जयपुर में एक कार्यशाला में ये जानकारी दी। केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित आउटरीच कार्यक्रम के तहत ये कार्यशाला रखी गई। श्री कुमार ने बताया कि इस अवधि में वस्तु और सेवा निर्यात में लगातार बढ़ोतरी हुई है। सेवा क्षेत्र के निर्यात में 9% से अधिक की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्यात में भी भारी उछाल देखने को मिला है। श्री कुमार ने विभिन्न देशों के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते से उपजी नई संभावनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे भारतीय निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में बेहतर अवसर मिल रहे हैं।
1: आज का ये आउटरीच कार्यक्रम भारत सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हमारे निर्यातक भारत के मुक्त व्यापार समझौतों और उनके माध्यम से सृजित हो रहे हैं अवसरों का पूर्ण लाभ उठा सके। उद्देश्य मुक्त व्यापार समझौतों का ये सुनिश्चित करना है कि व्यवसाय निर्यातक एमएसएमई और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स इनका प्रभावी ढंग से उपयोग कर निर्यात बढ़ाएं, नए बाजारों तक पहुंच बनाएं और हमारी जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसमें भारत की स्थिति को मजबूत करें।
0: सरकारी ई मार्केट पैलेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि नागरिक केंद्रित सेवा वितरण में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016-17 में जेम में भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्योगों की संख्या लगभग 2300 थी जो अब बढ़कर 12 लाख हो गई है। उन्होंने कहा कि जेम पर महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की संख्या भी बढ़कर अब 2,16,000 से अधिक हो गई है। साथ ही महिला उद्यमियों की ओर से की जा रही खरीद का आंकड़ा 93,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने ई फाइलों के निस्तारण प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया है। प्रशासनिक प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी को खत्म करने के लिए उन्होंने फाइल निस्तारण प्रक्रिया को और बेहतर तथा उत्तरदायी बनाने की बात कही। मुख्य सचिव आज विभिन्न समितियों के सचिवों की बैठक में बोल रहे थे। बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान में व्यापक जन सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने संपर्क पोर्टल की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण करने की बात कही। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज देशभर में कई आयोजन हुए। इस अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व सेवाएं दी जाती है। साथ ही विस्तारित अभियान के तहत 18 और 27 तारीख को ज्यादा जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की विशेष ट्रैकिंग और निगरानी की जाती है। इस मौके पर प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। बड़ी संख्या में महिलाओं ने इसका लाभ लिया। शिविरों में चिकित्सा अधिकारियों ने महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व और संतुलित आहार के प्रति जागरूक किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, वीबीजी राम जी के तहत किसी भी राज्य के बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 21 जून को फिर से आयोजित होने वाली नीट यूजी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। राज्य सरकार ने बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की तबीयत बिगड़ने के मामले में तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। और देश का कुल निर्यात पिछले 12 वर्षों में 468 अरब डॉलर से बढ़कर 863 अरब डॉलर तक पहुंचा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख

0: दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम की जिले भर में तैयारियां की जा रही हैं। मुख्य कार्यक्रम राजसमंद झील की नौ चौकी पाल पर होगा। इसे लेकर जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा ने जिला अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शिक्षा, पुलिस और चिकित्सा विभाग को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई। इस बीच जिले भर में जगह जगह योगा डे काउंटडाउन कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में नियमित योगाभ्यास कराकर फिट रहने का संदेश दिया जा रहा है। जिले में इन दिनों जनगणना 2027 के तहत मकानों का सूचीकरण और मकान गणना का काम जारी है। मौसम की परवाह किए बिना प्रगणक घर घर जाकर जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। चारभुजा तहसील क्षेत्र में दुर्गम पहाड़ियों के बीच बसे रूपनगर गांव में सर्वे दल 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचा। इस दौरान 7 घंटे में 60 मकानों का सूचीकरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अपील के बाद से जिले में ईंधन बचाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा, पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित जिला स्तरीय अधिकारियों ने ईंधन बचाने के लिए एक ही बस में सवार होकर दफ्तर तक का सफर तय किया। चारभुजा में आयोजित संध्या चौपाल में भी दोनों अधिकारी बस से ही गए। लोगों ने प्रशासन की इस पहल को सराहा है और प्रेरणा ली है। न्यायिक अधिकारियों ने भी पैदल चलने, साइकिल का उपयोग करने और अनावश्यक वाहन उपयोग से बचने की अपील की है। कांकरोली पुलिस थाना इंचार्ज सरोज बैरवा ने साइकिल पर शहर में गश्त की और ईंधन बचाने का संदेश दिया। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जिले में बरसात का पानी इकट्ठा करने और पानी बचाने के लिए कई गतिविधियां आयोजित की गईं। बनास नदी और गणगौर घाट पर राजसमंद नगर पालिका की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। इसके अलावा सरकारी विभागों, गौशालाओं और जल संरचनाओं की साफ सफाई की गई। जल पूजन और कलश यात्रा जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ा गया। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को जल और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। ये अभियान विश्व पर्यावरण दिवस पर संपन्न हुआ और इसी दिन से हरियालो राजस्थान अभियान 2026 की शुरुआत हुई। अभियान के तहत मानसून सीजन में अधिक से अधिक वृक्ष लगाए जाएंगे और जिले में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा। इसके लिए लोगों को नर्सरियों से पौधे वितरित किए गए। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान का तीसरा चरण भी शुरू हुआ। विश्व पर्यावरण दिवस पर राजसमंद में रन फॉर एनवायरमेंट मैराथन रखी गई। जिला कलेक्टर ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन शहर के विभिन्न मार्गों से होकर कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पौधे लगाए गए और पक्षियों के लिए परिंडे बांधे गए। सड़क सुरक्षा को लेकर जिले भर में विशेष सतर्कता देखी गई। जागरूकता अभियान चलाकर राजसमंद पुलिस ने लोगों को यातायात नियमों के पालन का संदेश दिया। इसके साथ ही दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए गए। जिला पुलिस ने एक विशेष आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को कहा है कि बिना हेलमेट वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाए। उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा बीते दिनों जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने जिला अधिकारियों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक की। पीने के पानी, स्वास्थ्य और बिजली आपूर्ति से जुड़े मुद्दों के तुरंत समाधान के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी भी जिले के प्रवास पर रहीं। उन्होंने सांगठ कला गांव में 67 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर और कांकरोली के द्वारिकाधीश मंदिर में अधिक मास की शुरुआत के साथ ही विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। मंदिर में रोजाना भगवान का विशेष श्रृंगार और मनोरथ हो रहे हैं। श्रद्धालुओं को खास झांकियों के दर्शन कराए जा रहे हैं। फूल मंडली, जल विहार, रथ यात्रा और नौका विहार के दर्शनों को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। ईद उल अजहा का पर्व भी पारंपरिक श्रद्धा के साथ मनाया गया। विभिन्न मस्जिदों में ईद की विशेष नमाज अदा की गई और मुल्क में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी गई। राजसमंद जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वी बी जी राम जी रातेत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव

0: मैं कोई कटौती नहीं करी जी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। और देश दिसावर माए बिक्री लारला 12 साल माए 468 अरब डॉलर बधर 863 अरब डॉलर ताई पूगी। समाचार सागे में सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। मनरेगा योजनाओं विकसित भारत रोजगार गारंटी आजीविका मिशन ग्रामीण वीबीजी रामजी माए बदलाव सारू केंद्र सरकार राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों बाबत 95,692 करोड़ रूपया रा अंतरिम बजट रो प्रस्ताव किन्नो है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान नई दिल्ली माए राज्य और केंद्र राज वाला प्रदेशों रा ग्रामीण विकास मंत्रियों सागे वर्चुअल मीटिंग माए ओ ऐलान किन्नो। इन पाछे खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका श्री चौहान कहो किणी राज्य रा बजट आवंटन माए कोई कमी नहीं करी ची है बल्कि लारला साल री तुलना माए बजट 40% बधाई चियो है।
1: किसी भी राज्य का मैं एक बताना चाहता हूँ, ये आशंकाएं कई बार लोग व्यक्त करते थे इसका कम हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, किसी का कम नहीं हुआ है। ये जो हमने दिया है 60% ही पिछले साल मनरेगा का जो एलोकेशन था लगभग उतना तो 60% ही दिया है, मतलब 40% ये बढ़ेगा पिछले साल से, तो किसी राज्य को कमी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।
0: वीबीजी रामजी कानून 1 जुलाई आखा देश में लागू फैला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए रा मुख्यालय रो दौरो कर 21 जून ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी प्रवेश परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका वे कहो कि परीक्षा साफ कोई सागे करावन और इनरी गोपनीयता बनाई रखन सारू सगला जरूरी जतन करया जा रहा है। शिक्षा मंत्री कहो कि इन दौरान आवन वाली अड़चना रो सामो करण सारू खुफिया तंत्र और केंद्रीय जांच ब्यूरो समेत सगला साइबर सुरक्षा संसाधन काम लिया जा रहा है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: जयपुर रा खो नागोरियान हलका माए पटाखा बनावन रा एक कारखाना माए लाए लाग जावनु 3 मजूरा री मौत वेगी और 5 मजूर घना दाज गया। जख्मी मजूरा ने जयपुर रा सवाई मानसिंह अस्पताल माए भर्ती कराई चिया है। रिहायशी हलका माए गैर कानूनी तौर चल रहा ई कारखाना माए हादसारी बगत महिलावा और बच्चा समेत 8 जना मौजूद हा। लाए लाग्यां पाछे वठे राखी जी गैस री टंकी फाटगी। हादसा री जानकारी मिलता ही सिविल डिफेंस री टीम मौके पुगी और दमकल री मदद आग बुझाई जी। थानाधिकारी ओम प्रकाश बतायो कि लाए लागण रा कारण री जांच करी जा रही है।
3: हमें सूचना मिली कि आग लगी हुई है, एक मकान में आग लगी है, तो हमने तुरंत मौके पे पहुंचे। मौके पहुंचकर यहाँ पे आसपास के लोगों की मदद लेकर के पानी के टैंकर लगा करके तुरंत आग बुझाने का काम किया और उसमें करीब 8 लोग इंजर्ड थे जिनको एम्बुलेंस के माध्यम से हमने SMS और JNU अस्पताल भिजवाया है। जो आसपास से पता किया तो कहा बताया कि उन्होंने कि कोई किराएदार था और वो अभी किराया लिया था।
0: प्रदेश राज्यसभा री 3 सीटा माथे चुनाव सारू उम्मीदवारा का नियम दाखिल करी जिया सगला 9 नाम पाना आज विधानसभा माए करी जी जांच माए सही मिलिया। द्विवार्षिक चुनाव सारू राज्यों 3 उम्मीदवार पर्चा दाखिल की नाहा। आम आए 2 भाजपारा और 1 कांग्रेस रो उम्मीदवार है। चुनाव अहलकार भारत भूषण शर्मा बतायो कि 3 उम्मीदवार कांग्रेस रा नीरज डांगी और भाजपारा डॉक्टर अलका सिंह और डॉक्टर सतीश पूनिया रा पर्चा री जांच पर्यवेक्षक और मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन री मौजूदगी माए कराई ची। जांच रा काम रो वीडियो ही बनाई चियो। नाम पाछा लेवन रे

0: करोड़ रुपए का लेवल न पार कर की है। अरब मौसम प्रदेश में तेज गर्मी और उमस रो असर बतकियो है। आज श्रीगंगानगर बीकानेर और जैसलमेर समेत कई ठोणा पारो 44 डिग्री सेल्सियस ने पार कर कियो। बाड़मेर चूरू कोटा जोधपुर और जयपुर में जोरदार गर्मी रही। इन बीच मौसम विभाग आज प्रदेश रा 7 जिला में अंधड़ बरसात और 5 जिला में लू बजन सारू चेतायो है। 11 जून नु राज्य रा कई हलका में ओजू आंधी बारिश वेवन रा आसार है। अहमदाबाद में राखी जी पहले विश्व योगासन चैंपियनशिप में राजस्थान पुलिस री सिपाही देवांशी शर्मा सीनियर बी हैंड बैलेंस होड़ री व्यक्तिगत श्रेणी में सोना रो तमगो हासिल किन्नो है। राज्यपाल हरिभाव बागड़े वाने आ उपलब्धि हासिल करण सारू बधाई और शुभकामनावा दीनी। राज्यपाल मारा बधाई संदेश में ई होड़ ने भारत री संस्कृति जुड़िया योग खेला ने दुनिया री स्वीकृति बताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 28 जून न विचार बतावेला। इसारू आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 26 जून ताई राय दे सको हो। नरेंद्र मोदी ऐप और माई जीओवी ओपन फोरम रे जरिए ही विचार भेजा जा सके है। आखिर माय खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो वीबीजी रामजीरा तहत किनी राज्य रा बजट प्रस्ताव में कोई कटौती नहीं करी ची। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 21 जून न ओजू ली जावन वाले नीट यूजी परीक्षा री तैयारियां रो जायजो लीनो। राज्य सरकार बीकानेर रा पीबीएम अस्पताल माए जापा वाली लुगाइया री तबियत बिगड़ बारा मामला माए रपट मांगी। हर देश दिसावर माय बिक्री लारला 12 साल माय 468 अरब डॉलर उम्बद हर 863 अरब डॉलर ताई पोगी। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भियो। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चौपाल।

0: दिनेश भाई सिंह जी आ 7 बजे ना अपना श्रोतागण है उड़ीक रहा के चौपाल कार्यक्रम भी
1: हाँ सर
0: अंदर ये चौपाल में लोग कोशिश करा के किसान भाइयों ने ग्रामीण युवाओं ने और अपना जितना भी सुनना श्रोता है
1: हाँ
0: माने एक चौकी जानकारी दा बढ़िया बढ़िया गाना होना।

0: और तो और अम्बई देखो कि मान लो रेडियो कम है तो आप मोबाइल माते भी जो का माना कार्यक्रम सुननी चाहे मैं सुन सके ये रिवास्ते करनो की कोनी एक ऐप है जो को डाउनलोड करनो है।
1: सही कहे गुरुंद भाई, न्यूज ऑन AIR जी को ऐप है उनने आप डाउनलोड कर लो और अपन आकाशवाणी जी का प्रोग्राम है, सब किसान भाई है, अपने युवा मोटियार है, ग्रामीण क्षेत्र जी की महिलाएं है, खेल खिलाड़ी है, सब आप जी का जो आप पसंद रहा कार्यक्रम वे सुने गुरुंद्र भाई, और खास तौर से जी का युवा जी का लोग है अपना भाई सैन है वे देखो अपना प्रादेशिक समाचार आवे फिर मैंने देखो करंट जी के सवाल आवे तो वे चाव सु अपना जी का प्रोग्राम है हुने
0: दिनेश भाई।

0: देखो, देखते ही देखते क्रांति आई रहा, क्रांति जकी जरिए मोबाइल आई,
1: हाँ
0: क्रांति जरिए सूचना आई, क्रांति जरिए इन सूचनाओं कई अधिकार कई जगह कहीं कह पारदर्शिता आई
1: कई चीजें जान
0: राज में काज में बाज में, है नी। तो इन लोगों ने कठे न कठे तो फायदो यो
1: जानकारी हुई सा ठा पड़ी। और पहला गुरुंद्र भाई देखो आ क्रांति नहीं ही आ सूचना नहीं ही तो देखो जानकारी भी होती कोनी, कानून बारे में भी जानकारी होती कोनी कि ओ इन करना ओ वे ओ करना ओ वे सके।
0: हर जकी विज्ञान री नवी खोज है नवी चीज है
1: हाँ
0: उन मिनख जमारे ने फायदो ही है।
1: हाँ
0: भाई पहला हूं था कंप्यूटर आवे कंप्यूटर आवे जो को कंप्यूटर काम करी तो बस मिनख की कर करी।
1: हाँ
0: कई लोग ये रे माते ही बचाव करता
1: के बेरोजगार हो
0: हाँ कंप्यूटर आनो ही नहीं चाहिए।
1: हाँ
0: अरे हमें देखो कि अगर जी कंप्यूटर आपने जीवन माइनस कर दो
1: हाँ
0: तो दुनिया ठप हो जा।
1: हाँ
0: मोबाइल है वही कंप्यूटर है, जरिए मोबाइल जरिए कंप्यूटर आपने जीवन में आपने रोजमर्रा का छोटा मोटा काम है ये में भी बहुत गहरो असर पड़ी हुआ है।
1: सही कहो गुरुंद्र भाई, वाज की भ्रांति ही वह बिल्कुल दूर होगी। और आज भी देखो ठोर ठोर के ही अड़ा कार्यालय है अड़ी फर्मा है अड़ी दुकानदारियां है तो वो टके अड़ा वैकेंसी आवे तो लेके अभी कंप्यूटर जो को काम काज जाने भी नहीं उठे जरूरत है। कंप्यूटर बहुत दिनों दिन जी की उपयोगिता है आ बड़ी है हर क्षेत्र में इन्हें। और खास तौर से गुरुंद्र भाई अपन जो को गांव और गवाड़ है वोटे भी देखो कंप्यूटर कई अड़ा लोग भाईशन बैठा है और रोजगार प्राप्त कर रहा है, कई अड़ा आवेदन फार्म भरे है, कई अड़ी जी की अपनी सरकारी जी की योजना है उन लोगों ने जोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो गांव हो ढाणी हो शहर हो कस्बो हो कंप्यूटर जी की उपादेयता है बहुत ज्यादा होगी। और अपन गांव जी की जमिया है गुरुंद्र भाई, अपन जी का खेत है, अपन जी का पुराना अभिलेख है वे भी देखो गाने कंप्यूटर में जुड़ा है।
0: बिल्कुल देखो कि हमें एक बदलाव तो गांव वाला स्पष्ट महसूस कर सके है वो है म्यूटेशन रो।
1: हाँ
0: के भैया मैं कोई मान लो रजिस्ट्री कराई खेत री तो जो खरीदार है पचे बहुत चक्कर काट तो पटवारी करने जाओ तो रजिस्ट्री री कॉपी पेश कर तो नहीं
1: हाँ
0: तो वो पटवारी कहते तो 15 दिन बाद आ न्यू आन हमें कहीं सिस्टम यो कि अठी ने तो रजिस्ट्री ऑनलाइन अपलोड हुए
1: हाँ
0: उठी रजिस्ट्री होती वो साथ साथ म्यूटेशन भरी जाए।
1: हाँ
0: अगर म्यूटेशन नहीं भरी जाए तो बार रजिस्ट्री अपलोड होड़ी रुक जाए
1: हाँ
0: तो क्यों रो मतलब वो है कि एक दूजे मात निर्भर हो गया। रजिस्ट्री रो मतलब वही जाए कि भाई फलानी चीज रामलाल खरीदी हमें वो श्यामलाल खरीदी है
1: हाँ
0: लेकिन आ जकी राजकाजरी जानकारी लोगा ने ही कोनी गांव रा बोड़ा मिन को था बे म्यूटेशन अटका देता रू में रिश्वत चालती।
1: हाँ
0: हमें ऑनलाइन होनु ए चीज है ओले ओले कम हो रही है भाई जमा मंदी है या खातेदारी है कहीं बैडो है कहीं नहीं है कितो तो नुकसान हो। अब ये रो धीरे धीरे आकलन होने लागियो वरना पहला कहीं है कोऑपरेटिव में जो की सोसाइटी बनी भी हमें लोनिंग में ही गांव वाले ठा नहीं पड़तो मारे कितो तो लोन हो न कितो तो माफ हो।
1: हाँ
0: तो अब आप जरिए ऐप जुड़ियोड़ा हो तो आपने ठा है कि भाई मारे इतो फायदो हो है इतो नुकसान हो और तो और राज्य सरकार या केंद्र सरकार की कोई योजना है वे में सीधो वे ने कोई अनुदान है
1: हाँ
0: तो बहुत पहला तो जरिए घूमतो फिर तो आओ तो नगद कुण देवे किसान तक आते आते वे पया तो गायब हो जाता खाली अंगोठा अंगोठा रह जाता।
1: हाँ
0: आज 12-13 महीने किसान आरो खातो खुलियोड़ो सीधो खाते रे महीने आवे तो आज की सूचना क्रांति है आ खेत खलियान और गांव रे महीने रहनाले उन आखिरी आदमी तक पुगी है।
1: हाँ
0: तो हाल ही कई बदलाव और आना है अब नया बदलाव आवेला जका इन विज्ञान और टेक्नोलॉजी में चीज लावेला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी
1: हाँ
0: के भाई दिमाग भी लगाओ
1: हाँ
0: हमें कोई खून खाचे किनी तरह री राज करिए चोरी करनी चाहिए कोई गड़बड़ करनी चाहिए तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्हें पकड़ ली।
1: हाँ क्या भाई अटल जी को है गलत काम हुए है करियो। तो गुरुंद्र भाई आज की सूचना है क्रांति आई है तो देखो कि आम जी को किसान है उन्हें जानकारी मिली है। और आजकल देखो पढ़िया लिखिया युवा मोटिया रहे तो खट आप रहे ऑनलाइन जापरान अपना खाता निकाल ले खसरो नंबर हुआ तो वो डालम देख ले पल्ला पल्ला ठा पड़ जाके इन्हें कटे कटे खसरा एवड़ा है नामू देख ले भाई किसान लोग भाई खातेदारी में नाम कहीं नाम उठा पड़ जाएगी इन्हें कटे कटे जमी है और कितनी कितनी जमी और नाप तोल भिजा है गुजा।

0: देखो भाई लोगों, अगर कटी जमीन की जानकारी लेनी है तो राज्य वरु हो सके,
1: हाँ
0: राज्य रे बाद वो जो को जिलो है वो भरो, जिले री मैपिंग हुए बाद वो तहसील भरो, तहसील भरिए बाद
1: आ रही हो
0: वो
1: जा
0: किन
1: रसू गांव
0: पटवार
1: में।
0: मंडल मंडल में है,
1: हाँ
0: पटवार मंडल ले बाद अगर आपने खाता या खसरा नंबर नहीं भी ध्यान है तो भी पच आप रो नाम भरन वे रो पतो कर सको कि हमारे नाम में या हमारे में है,
1: कॉपी भी निकाल सको।
0: कॉपी भी निकाल सको, उन कॉपी ने काम में भी ले सको। एक तरह तो आ राजस्व प्रतिलिपि है,
1: हाँ
0: तो क्यों नो मतलब है कि एक तरह कंप्यूटर में सुरक्षित होगी। पहला रजिस्टर में लिखी होती करती जगह अंदर रजिस्टर हो तो वो आदमी मिलते इसको नहीं,
1: हाँ
0: और कोई नकल या कॉपी कटावनी पड़ती तो अट कचड़ी में चक्कर काटना पड़ता, अभिलेखागार जानो पड़ता, फार्म भरना पड़ता, कही तो वकील करना।

0: बर्तन तो
1: कई दिन लग जाता,
0: कई दिन लग जाता। मने कोई चीज री जरूरत है आज,
1: हाँ
0: में महीने भर फिरनो पड़तो, तो जो ई में बदलाव आयो। और आज थे कि अभिलेख रो कहो कि अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस भी है,
1: अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस है। गुरुंद्र भाई देखो अभिलेख री बाता बाता में देखो आप बाता ठा दिया, तो जी का अभिलेख हाथों लिखिस्ता करिस्ता है कि भाई इनकी कहीं इतिहास है, इनकी कहीं व्यवस्था है, सारी चीजें जी की है लिखित रूप में होती। तो ये देखो बहुत ही सहजन जी की है राह चुड़ी है। बड़ा बड़ा जी का संग्रहालय है, कई अड़ा पोथी ग्रंथालय है, उठे देखो मोटा मोटा जी का अपना अभिलेख है, सुरक्षित है। और अबे टेमो टाइम ही अपने हुन में आयो है लगभग मतलब कंप्यूटराइज होगा पुराना जितना भी जी का अभिलेख है। तो उन्होंने जी की कैडी भाषा ही कहीं ही एडा कई विद्वान बैठा है भाषा ने ट्रांसलेट करता था का। पहला माजनी भाषा ही तो इन माजनी भाषा ने हम हिंदी भाषा में आगे अंग्रेजी में इन्हें पूरो जी को अनुवाद जी को है फाचू इन कॉपी आपा कहवा बा हैंग होगी है।
0: बिल्कुल देखो अभिलेख जको है अपने इतिहास रो आईनो है।
1: हाँ
0: और पहला अभिलेख जको है वे कई तरह की चीजें माते लिखता जका स्थाई होता,
1: हाँ
0: तो उन्हें ताम्र पत्र भी क्या होता।
1: तांबर पत्र में लिखता सा
0: हाँ तो वह उकेरता के बाद बरसों बरस तक रह वेर लारले महीने 15 दिन पहला एक हमचारी पड़ियो के विदेश रे मैंने ताम्र पत्र माते लिखियोड़ा अभिलेख जका है भारत सरकार ने सौंपिया।
1: हाँ
0: तो क्यों नो मतलब है कि अब जको है अभिलेख कंप्यूटराइज्ड हो रही है, तो कंप्यूटर में सुरक्षित हो रही है। लेकिन बीच में एक टाइम हो देश आजादी रे बाद जका खातेदारी और जमा मंदी रजिस्ट्री ए जका सरकारी कागज आनी
1: हाँ
0: बाने बे उन्हीं प्रतिलिपियां जमान दफ्तर में रखतान उठे कहीं होतो के मान लो कटे कोई दफ्तर में बरसात रो पानी बरीज गयो तो वे अभिलेख खराब हो जाता।
1: हाँ
0: तो ए जकी व्यवहारिक कमियारी वजह जकी अभिलेखा में खराबी आती, तो ये रो खामिया जो कई बार गांव रे खातेदार ने या किसान ने भुगतनो पड़तो। त्यों त्यों विज्ञान आयो है तो आप अपने तो आतरे में ही नहीं आप रो खेत म्यूटेशन प्रतिलिपि सब आप 2 मिनट में काट सको।
1: हाँ
0: भारत रे जको किसान है आत्मनिर्भर बन ही सशक्त बन ही जनई भारत विश्व गुरु बनी।

0: सही कहे गुरिंदर भाई। देखो कि जागरूकता अपने हर क्षेत्र में राखनी है, करनी है, और जरूरत इन बात रही है कि अपने तकनीकी रे साथे चालना है। किसान भाई है तो वे भी आप रे खेती बाड़ी रे काम काज है, तकनीक क्यों करे रहा। मैं तो 2-2.5 घंटा में इठा पड़ जा गुरिंदर भाई, एक आंधी तूफान उनाड़ो है तो आप अपना जी का पशुधन है वाने सुरक्षित ठोड़ माता आप बांध सका कर सका। कटी मान लो अपनो चारो पड़ियो है, कटी धान पड़ियो है, तो आंधी तूफान आवे मैं छाट वे मेनू पहला पहला आप जो भंडारण है वो चौकी जगह मत कर परा अब, और आपा नुकसान सो भी बच सका।
1: जानकारी और शिक्षा ही आगे बढ़ने रो तौर तरीको है। भारत ही तो मोटो देश,
0: हाँ
1: 140 करोड़ आबादी अटे, तो भाई हर 8 किलोमीटर माते बोली बदले, वे पहना हो है वो बदले है नी,
0: हाँ बारे कोसा बोली पलटे।
1: हाँ बात बात री जाति, भात भात रो लोक जीवन है नी,
0: हाँ
1: और उ में भी बहुत बड़ो एक कहेंगे समाज को है आदि

0: आदिवासी समाज जो जमीन और जंगलों से जुड़ो है।
1: हाँ
0: तो क्यों नो मतलब है 1947 15 अगस्त ने आप आजाद हुआ उन टाइम दुनिया आपन माते आ थोड़ी हो चीज हो कि 75-77 साल में आप पांचवी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जावा।
1: हाँ
0: क्योंकि मैं तो देखियो है तो जंगल और प्रकृति कंधे रहना लोग है लेकिन सिर्फ और सिर्फ शिक्षा
1: हाँ
0: शिक्षा री बदौलत आज आप इन स्थिति माते पहुंचे हैं। और आदिवासी समाज री अगर आप बात करा तो आज भारतीय जकी राष्ट्रपति है
1: हाँ
0: वह आदिवासी परिवार री महिला है। तो शिक्षा री वजह में प्रथम नागरिक बनिया है। तो जितना भी आदिवासी उन टाइम क्रांतिकारी भी होया देश आजादी रे मायने तो जटे जटे शिक्षा री अलख लगाई जी नहीं
1: हाँ
0: उठे उठे तो आप कामयाब यार जटे शिक्षा नहीं यानी उठे हाल भी भाई ला रहे हैं।
1: सही कह गुंद्र भाई ला रहे। हाँ तो जरूरत इन बात री है कि आप उन्हें आगे बढ़ावा करा। और बात यूं है कि जो आप शिक्षा री बात करी तो अबार भी अड़ा क्षेत्र है तो उठे जी का बालक है बालिका है उन्हें आप शिक्षा देवा करा और ज्यादा से ज्यादा जी को प्रचार है प्रसार आप करा। गुरुंद्र भाई देखो लाल दिन बढ़िया दिवस है विश्व समुद्र दिवस और विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस है
0: काले 8 जून ने नी
1: हाँ
0: तो कई ला एडा जका काम रा विषय वे और बहुत एडी जानकारी जकी वास्तव में लोगों ने फायदो पहुंचावे और फरमाइशी कार्यक्रम हुए तो मैं वो लोग प्रयास करा भी एक दिन पहला या एक दिन बाद बता
1: हाँ
0: दा।
1: बताओ सर
0: तो विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस भाई देखो ट्यूमर यानी कैंसर तो है ही घातक
1: हाँ
0: और कई अड़ा जगह है उठे गांठ बन जान गांठ है महीने जकी विकृति आवे बा कैंसर में बदल जा। लेकिन हमें दिनेश भाई लगातार डॉक्टर वैज्ञानिक प्रयास कर रहा है कि इन बीमारी रो भी इलाज ढूंढियो जावे।
1: सही बात कही गुरेंद्र भाई जरूरत इन बात रही है कि हाउ चेती राखो टेम आते सफा करने जाओ तो देखो कि कैडी भी बीमारी वे तो गुरेंद्र भाई वह 100% खत्म वे सके।
0: आ है कि आकलन जल्दी हो जा
1: हाँ
0: भाई छोटी चीज वे तो वह पकड़ में आ जा और पकड़ में आए पछे उगे इलाज भी हो जावे। और विश्व समुद्र दिवस में तो भाई देखो के 70 रुपया है पानी 30 रुपया है जमीन
1: हाँ
0: और समुद्र रे मायने जेरी ताकत है उगेरी आज दुनिया में ताकत है। और लाडले दिन आप देखियो कि समुद्र रे जका तेल उत्पादक देश है वाणे आए पाए जो को समुद्र है
1: हाँ
0: उए में कई राजनीतिक भूचाल आया जिन्हों अंतर्राष्ट्रीय स्तर माते जो को क्रूड ऑयल है उगेरा भाव में भी उछाल आयो। तो क्यों नो मतलब है कि समुन्द्र खाली मीनकारो ही नहीं है भाई अरबों खरबों जीव जंतु प्रजाति रे जीवा रो भी है।

0: हाँ सही कहो सा, वणो जीका जीव है वन्य बिंदु को सुरक्षित रखा, उनारो संरक्षण करा और प्रदूषण वणु आपा बचावा।
1: बिल्कुल रामे अताई गणी होगी इन कार्यक्रम रो भगत हो रियो है पूरो।
0: हाँ सर,
1: तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने सारू आप रे साथी गुरविंदर विश्नोई
0: और दिनेश राणे जाने शेख दिराओ
1: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे चौपाल, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम सीमा डेरी गूंज।

0: अमे
1: तो नवलोबा आ तो हम देखो के मौसम तो परिवर्तन एवी है पर हम इन मौसम रहता आप सावधानी भी राखो नहीं के आप मोटी बात आ है की बिजली का कई पुराना खंबा है के कोई अड़िया कोई मोटा पेड़ है क्या कटी मैं अखबार में पढ़ियो ने एक दिन हुनियो के एक मोटो रूकड़ो हो पुरानो तो कोई कार नीचे कोई बरसात आवती जने कोई कार ने मोटरसाइकिल वालो रोक दी के भाई थोड़ी देर बरसात कम है जा तो फचा लो आगे पर नवलो बा पेड़ रो डालो हो मोटो जो वो पड़ियो माते उन वजह तुम्हारी मौत होगी
0: तो मौतरी ठोड़ है नी मौतरी ठोड़ रो की ठा नहीं पड़े कुदरत का इलाका खेल खेले
1: आ तो बात हाची नवलो बा अपने सावधानी अगर आप राखो नहीं तो इन चीजों आप बच सको
0: और तो भाई देखे है
1: जो हम थे हमें इन्हें बढ़ती हूँ बचाओ हारू देखो कितनी सावधानी राखो ना कितना थोड़े है बांध दियो
0: देखे काल काली है
1: हाँ आ तो बात है
0: अपने आप थोड़ा मौके ठाने मत बुला ले आ कोई ठा पड़े कोनी क्या के मौतरी वजह मौतरी जगे बा
1: कुदरत है
0: बाद कम ठा हो भाई मेट है को क्या दो मिनट
1: आ उबर है उन वाट मोरो लास्ट का
0: हुआ भाई की कोनी ठा नहीं क्या के तो तकी है पर बात है भाई कुदरत तो निजाम है
1: हाँ कुदरत तो निजाम
0: फैसला मोटा है पर सलाम करा
1: हाची बात है ना
0: बात है तावड़ो है तो ही देखे हैंगर वाज पड़े और मैं बरी तो हैंगर वाती बरी
1: वो तो हैंग वास्ते है
0: ही पड़े तो हैंगर वाते पड़े
1: तो प्रकृति भेदभाव नहीं करे ना बाबा
0: आंधी तूफान आवे तो कोई है जो कह नहीं भाई के हैंगर वाता तो बात आ है भाई नरेश के कुदरत आपरा काम करे मिन का आपरा काम करे पर मिन कह जो कुदरत ने जब जब नुकसान पुगाई तो कुदरत ने भी आई
1: और कुदरत पाचो प्रति उत्तर दई
0: नहीं तो मारी बात हूँ के मैं बड़े मोटो तालाब वेद देख भरियोड़ो वे और भैया तिरे ने है जो कहनी
1: और रोकड़ा लागुड़ा ने मोटी ऊंची पाल वे जने तो हैं
0: मिन गए जो कहनी आप ट्रैक्टर भर भर पानी ले जावे तो वो कहनी निजरो नारो वे मैं तो मोटी आर पड़े मैं हैं टाप पड़े देखता के पिड़गट जाग दो दे हैं लुगया गौरी आप रे गड़िया ले नावती
1: तड़ा मा तू पानी लाओ
0: लावती वो ये मैं आज घर घर नल होगा कैन टूटिया आएगी तो बात नारी होगी पर हम देखे भाई पानी को बचत करनी बहुत
1: जरूरी है
0: क्या नहीं जल है तो कल है
1: कल है
0: नहीं तो बचत क्या नहीं करो राज नहीं राज में दोष दिए की नहीं है
1: तो बचत की करना लो हिनान करना बंद कराओ
0: नहीं हिनान तो करो पर देखे हाव कह नहीं के खोगल नहीं करना
1: यूं हल्लो ही नहीं तोड़ना
0: नहीं भाई देखे पर मुंडो जेब एक लोटे में धुपे तो बाल्टी भी क्यों तोड़ो
1: आ तो बात हाची है
0: तो मैं उनके मार्ग में क्या हो मत रहे उन्हें कौन तो ठीक है
1: नहीं हाची बात है नवलो
0: तावड़ो पड़े तावड़ो पड़े ले तावड़ो पड़े यार गीत तो हुनाई दे
1: हुनाऊंगा
0: मार जी हो रोजा

0: जोरदार है भाई।
1: देखो नवलोबा, आज दिन जो को है

0: अंतरराष्ट्रीय अभिलेख दिवस है।
1: हाँ तो बात होगी थार पर हूँ पट्टा पुरी दिन बात बता दी।
0: हाँ तो जने
1: पुरानी है जो क्या जी बैया है कोई। हाँ हाँ खाता है बे दूजा है तो बात।
0: हाँ ते क्या दियो नहीं
1: है। हाँ तो है जो क्या नहीं है घाव जे हंसन राती है और सरकार कन है पांडु लिपिया पड़ी
0: पड़ी है।
1: बड़े
0: बड़े नवलो बदे को के आज दिन जन्म जयंती है किरण बेदी जी पहली महिला आईपीएस अधिकारी है और एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता भी रिउड़ा है।
1: ओ किरण बेदी।
0: हाँ
1: ठीक ठीक दिल्ली में पे है जो पुलिस नौकरी करता
0: था। हाँ, पहला आईपीएस महिला
1: पहली लुगी जात होन कह नहीं के भाई बाप पुलिस में।
0: हाँ,
1: एस भी बनिया। अरे मैं तो करो सुधार करियो बड़ी क्या नहीं हिम्मत वाली लुगी।
0: हिम्मत वाली लुगी।
1: हाँ तो एडी क्या नहीं लुगे ना आगे हिम्मत दे दियो तो आने कोटि कोटि बधाई है।
0: बधाई
1: और भगवान हजरत हजरा के सेवा चाकरी करता रहे।
0: बड़े नवलोबा देखो के आज दिन नंदनी सतपति जी एक प्रमुख राजनेता और लेखिका है और ओडिशा की आयरन लेडी नाम जो है जाने जावे।
1: हाँ भाई देखे उठे लुगे जात ने कह नहीं चीन की दियो तो आनी कोई नहीं भूल कोटि कोटि नमन है मनरेरा फूल चढ़ाऊं। बड़े
0: नवलोबा देखो बसंती देवी ए भी एक ब्रिटिश जो है शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानी है और हम बड़े बताऊं तो नवलोबा के लक्ष्मण प्रसाद जी दुबे एक शिक्षक है और शिक्षक रहते हुए कई काम करिया और
1: जग जावा काम करिया गुणी मिन्न जोत है जो जगई अदू घना मिनका फायदो हो तो आने कहीं कोटि कोटि नमन करा।
0: हाँ
1: मनरेरा फूल चढ़ाऊं।
0: बड़े नवलोबा देखो किरण मार्टिन एक बच्चों जो है चिकित्सक है सामाजिक कार्यकर्ता है और कई जो है गैर सरकारी संगठन और स्थापना करी और कई जो लोग है जो की झोपड़ियां में रहने वाला और सुधार का काम करी।
1: हाँ भाई देख गरीब गुरबे हार होती है टाबरिया ने क्या बीमारी है जिनको छुटकारो दी रहे हो आज जान क्या नहीं गरीब बस्ती में गरीब कौन जा भगवान रूप है वो जा तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटी कोटी नमन है मनरेरा फूल चढ़ावा।
0: बड़े देखो नवलोबा भारत रा मान स्वतंत्रता सेनानी हरि किशन सरहदी जी आज और भी जन्म दिवस है जो को पंजाब में जन्म लियो और ब्रिटिश जो भारत हो उन टाइम आंदोलन में कई सक्रिय भाग लियो।
1: हाँ भाई देखे आजादी का दीवाना है और तराना गाँव तान जुलम अत्याचार सहन कर अपने आजाद करार किया तो आनी कोटी कोटी नमन है।
0: हाँ।
1: मनरेरा फूल चढ़ाऊं। बड़े
0: नवलोबा देखो दिनेश चंद्र मजूमदार एवी अमर शहीद और प्रसिद्ध क्रांतिकारी है और आज दिन बड़े नवलोबा देखो के परिनिर्वाण युवड़ो अब्बास तैयब जी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी है और गांधी जी रा जो है के बहुत करीबी सहयोगी है और गुजरात रो ग्रैंड ओल्ड मैन।
1: हाँ भाई देखे गांधी जी अलग जगह।
0: हाँ
1: और चाहे कह नहीं के भाई क्या क्रांति करने वाला चाहे भली कह नहीं गरम दल रहा और चाहे नरम दल रहा दो ही पाड़े थपेड़ो देन अंग्रेज नटू कह नहीं देश निकालो दियो तो एड़ा बिरला मिनका ने कोटी कोटी नमन है मनरेरा फूल चढ़ावा।
0: हाँ।
1: बड़े
0: नवलोबा देखो के आज दिन जो को परिनिर्वाण युवा धीरेन्द्र जी ब्रह्मचारी एक प्रभावशाली भारतीय योग गुरु और लेखक है और आते रहते देखो के राज खोसला जो हिंदी सिनेमा का दिग्गज निर्देशक निर्माता और पटकथा लेखक है और आचार्य जी एन रंगा ए भी जो एक स्वतंत्रता सेनानी और जो है किसान आंदोलन और जनक है मकबूल फिदा हुसैन और अंतरराष्ट्रीय स्तर जो को है मान्यता प्राप्त
1: चित्रकार
0: हाँ, भारत रो पिकासो भी कहवे और हमें देखो नवलोबा आज दिन जो परिनिर्वाण युवड़ो है असद भोपाली जी एक प्रसिद्ध भारतीय हिंदुस्तानी कवि और फिल्म गीतकार है।
1: ठीक ठीक असद भोपाली जग सवा कह नहीं करता है जो कह भाई गीत लिखिया।
0: हाँ?
1: और कह नहीं राज घोसला फिल्म बनाई और दूजा आप भी ठोड़ मत हैंग सोका काम करिया तो भाई हैंग मिनका ने कह नहीं के भाई कोटि कोटि नमन है अकीदतरा गुल पेश करा मंदरेरा फूल चढ़ाओ
0: फूल चढ़ाओ।
1: ठीक है हमें भाईरा मारी कोई मन रख कर थोड़ो एक अद कोई
0: गीत
1: सुना कह नहीं के भाई मंदरों घोड़ो डब जाओ
0: तो लो जन अर्ज सुनो।

0: नहीं पाजी।
1: और हमें थे है जी को थोड़ा कह देखो कांदा बोटो
0: हाँ
1: और आलू बोट लोन बढ़िया है जो कह रही के ओलन सब्जी कराओ
0: हाँ नवलो
1: और बढ़िया कह रही के भाई बेलू वाली तैयारी करा दो हूँ फेर लू माला
0: हाँ फेर लो
1: और माला फेर बैठो हूँ जिसे थारी तैयारी हो जी मारा माला फिर जी
0: हाँ
1: और हमें देखा कि तारा ही खासा ऊंचा आएगा अंदाज यो होगो आन प्रोग्राम रो टाइम होगो पूरो
0: हाँ
1: तो भाई सेना लेवा ही
0: राम राम
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।

श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाजें, बोल हैं प्रसून जोशी के, संगीत शंकर एहसान लॉय का, फिल्म है आरक्षण।

ये गीत है एक दीवाना था फिल्म से। क्लिंटन सेरेजू और कल्याणी मेनन की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

ये गीत है ब्रेक के बाद फिल्म से विशाल ददलानी और एलिसा मेंडोंसा की आवाजें, प्रसून जोशी के बोल, विशाल शेखर का संगीत।

ये गीत है साथिया फिल्म से। के कुणाल और प्रवीण मणि की आवाजें, गुलजार के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात के 8:45 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
2: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया। तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
3: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां

दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: टीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनसीए की डीजी स्वयं भी यहाँ चाउनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी

0: घोषणा की।
1: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाकर ठीक ठाक रहता हूँ।
2: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये गीत है नमक हराम फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़, आनंद बख्शी के बोल, आर डी वर्मा।

ये गीत है चोरी चोरी फिल्म से लता मंगेशकर और मन्ना डे की आवाजें, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

ये गीत है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, गुलजार के बोल खय्याम का संगीत।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम मनचाहे गीत।

स्वागत है आप सभी का मनचाहे गीत में, जहां हम आपको सुनवाते हैं आप ही की फरमाइश के गीत। आप पत्रों और ईमेल द्वारा हमें अपनी फरमाइशें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है manchahegeet531@gmail.com manchahegeet531@gmail.com। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट मुस्कान।

स्वागत है एक बार फिर आपका मनचाहे गीत में। ये फरमाइश हमें भेजी है कल्याण मुंबई से किशोर हिवराले, सुजाता हिवराले, प्रतीक हिवराले और प्रतीक्षा हिवराले ने।

अगली फरमाइश है जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु, मुकेश जगताप की।

ये मेल हमें भेजा है इस्लामपुर जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से नासिर पटेल, रिजवाना अंजुम, अल्फिया, सानिया और रेहान ने।

अगली फरमाइश है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से ये मेल हमें भेजा है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह ने।

मजनू का टेला से ये मेल हमें भेजा है कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना मध्य प्रदेश से। ये मेल हमें आया है उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का।

ये फरमाइश हमें भेजी है मामुलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तायड़े, वसंतराव भोज ने, पीएस नहावकर और तुषार करांगले ने। कैथल हरियाणा से ये मेल है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा का।

अगला मेल है मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति बंसोड़े और वैभव शिंदे का। हिल स्टेशन खंडाला से ये मेल हमें भेजा है आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे ने।

ये फरमाइश है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक और जयपाल यादव की।

कोटिया कला दुर्ग से ये मेल हमें भेजा है संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू ने।

ये फरमाइश हमें भेजी है मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली पंडरपुर से जाकिर मुलानी, सुमैया मुलानी, सुबान मुलानी, समीर मुलानी, सलमा मुलानी, मुमताज़ मुलानी, दिलशाद मुलानी, नासिर मुलानी और

समस्त मुलानी परिवार ने। अगला मेल है कुड़ी सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और हिमाक्ष का।

ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश हमें भेजी है बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू ने।

छत्तीसगढ़ रायपुर से ये मेल है नरेंद्र कुमार जाटव, संदीप जाटव, लड्डू जाटव और टुक टुक जाटव का। उमरखेड़ से सिराज खान और शबाना खान।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यहीं हो, यहीं कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत, अब दिल में यही बात इधर भी है।

आप सुन रहे हैं मनचाहे गीत, और अगली फरमाइश हमें भेजी है जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत जहां, खंडवा से निशा और दुर्गा कुमारी, झांसी से शंकर देव चमूरिया ने।

ये फरमाइश है ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी।

0: रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से ये मेल हमें भेजा है उदयवान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और समस्त परिवार ने।
1: अरे

गांव कलाना, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से ये मेल हमें भेजा है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, सतीश कड़वासरा, योगेश कड़वासरा और युद्धव कड़वासरा ने। एकता कॉलोनी रोहतक से ये मेल हमें भेजा है सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट ने।

ये फरमाइश है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा प्रवीण की। ये फरमाइश है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी की।

ये फरमाइश है गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र बिजारनिया, राजपाल बिजारनिया, अभिषेक बिजारनिया, योगेश बिजारनिया, पूजा बिजारनिया, आरजू बिजारनिया और नव्या बिजारनिया की। छत्तीसगढ़ मदनपुर से ये मेल हमें भेजा है श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू और राहुल साहू ने।

लेवाई छत्तीसगढ़ से ये मेल हमें भेजा है गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी और रानी मानिकपुरी ने। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से ये फरमाइश है सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चनाताई गोंडाने और हीरामन शिंडे जी की।

आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मेल हमें भेजा है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने। सोंगा मगरलोड से ये फरमाइश है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन और हियांश कुमार चंदन।

श्रोताओं, मन चाहे गीत में आज इतना ही। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए, अपनी फरमाइशें भेजते रहिए और अब अपनी होस्ट मुस्कान को आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि।

0: अभी आप सुन रहे थे मनचाहे गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक

0: मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड 19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनकी पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। जम्मू कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्रशासित प्रदेश के कश्मीर और जम्मू डिवीजन के शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन क्षेत्रों को कवर करते हुए 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा की तिथियां जारी कर दी हैं। विस्तृत और ताजा जानकारी के लिए बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार यह सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Renuka. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi